आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः कालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: कर्म गति टारे नहीं टरे। एक समय था जब सब लोगों को हम यही बोलते हुए सुनते थे, कोई भी काम अगर नहीं हुआ तो व्यक्ति सामान्य रूप से ये उदाहरण दे देता था, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे जितने करो उपाय। लोग जीवन में इसे याद रखते थे और इसे एक फायदा था, वे गलत कार्यों से दूर रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस पंक्ति को भूलते गए, लोग भौतिकवाद की ओर मुड़ते गए, डूबते गए उसमें, लोग अच्छे बुरे को भूल गए। इस अंध भौतिकवाद ने इंसान को मशीन बनाया, लेकिन पूरी तरह ये भी नहीं हो सका, मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, ऐसा हमारे धर्मग्रंथ भी कहते हैं। आज के लोग मानते हैं कि हम विज्ञान के युग के हैं और जब तक हम तर्क की कसौटी पर कस नहीं लेंगे, किसी भी बात को या सिद्धांत को मानेंगे नहीं। ऐसे ही कहने वाले लोग ईश्वर को भी नहीं मानते। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को भी ये मानना पड़ता है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। एक जगह की घटना है, एक महिला एक बीमारी से ग्रस्त थी, उसका इलाज किसी भी चिकित्सक से नहीं हो रहा था। आखिर में चिकित्सकों ने यह फैसला किया कि उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा जाए। मनोचिकित्सक ने उस महिला को सम्मोहन विधि के द्वारा उसके जीवन की कुछ गुत्थियों के बारे में

0: पूछा। कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थियां थीं जिन्हें जानना मनोचिकित्सा के लिए जरूरी था। तो महिला ने अपने कई जन्मों का ब्यौरा उस चिकित्सक को बताया। चिकित्सक ने उसके कुछ जन्मों को सत्यापित भी कराया तो वो घटनाएं सही निकली। ये पता चला कि वो महिला अपने पहले के जो जन्म थे उनके कर्मों के हिसाब से ही अगले जन्म में सुख या दुख भोग रही थी और उसके इस जन्म की व्याधि भी पहले जन्म के कर्म के कारण ही थी। इस घटना के बाद उस महिला के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। इसे चिकित्सकों ने अपने से देखा और जांचा परखा है। पता नहीं ये तथ्य कितना वैज्ञानिक तौर पर मान्य है, लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं कि पिछले जन्मों की बात हम न भी माने तो इस जन्म में हम जो कार्य करते हैं आने वाले समय में हमें उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। छोटी सी एक बात है, हम कोई गड्ढा यदि खोद दें कि उसमें हमारा कोई शत्रु आकर गिर जाए तो किसी न किसी दिन उस रास्ते से हमें भी गुजरना पड़ता है और तब हो सकता है कि उस गड्ढे में हम गिर जाएं। ऐसा तो सभी लोग मानते हैं, तो हम ये क्यों नहीं माने कि हम आज अगर कुछ गलत कार्य करेंगे तो इसी जन्म में हमें अपने इसी मानव जीवन में उसका परिणाम झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कहा गया है ना रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे के लिए धन जमा करके रखता है, उसी तरह से हमको भी अपने आने वाले समय के लिए अपने कर्मों का संचय करना चाहिए। अच्छा, यदि हम मान भी लें कि ये सब बातें बेकार है, फिर भी यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो अच्छे कार्य हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे अपने बाल बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए अच्छे फल देकर जाएंगे। तो हम अच्छे कर्म यदि करें तो उसमें किसी तरह का संकोच, किसी तरह की बुराई और किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। जीवन में हम आत्मसात करें कि हम कितनी भी चतुराई कर लें, हम जैसे काम करेंगे उनका हिसाब तो एक न एक दिन रचयिता के सामने देना ही पड़ेगा, वो चाहे हम जन्म की बात माने अथवा न माने।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है खाद्य की उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं देव नारायण यादव।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाइलोकन, आजुक दिन अपना सब चर्चा करब जैविक खादक संबंध में। किसान भाई, खाद शब्दक उत्पत्ति संस्कृत के शब्द खाद्य से भेल अछि, जकर शाब्दिक अर्थ होइत अछि भोजन। किसान भाइलोकन, फसल अवशेष आ अपशिष्ट पदार्थ सभक अपघटन से प्राप्त हुआ वाला ओ पदार्थ जकर उपयोग पौधा सभक आवश्यक पोषक तत्व सभक आपूर्ति के लिए कैल जाता है जैविक खाद कहावत है। किसान भाइलोकन, माटि में जैविक खादक प्रयोग ओतबे आवश्यक है जतेक एकटा नवजात शिशु के लिए माँ के दूध आवश्यक होइत अछि। जाहि प्रकारे माँ के दूध बच्चा सभक विभिन्न प्रकारक बीमारी सबसे बचेबाक संगहि संग हुनका संपूर्ण पोषण प्रदान करैत अछि, ठीक ओनहिए जैविक खाद मृदा के भौतिक, रासायनिक आ जैविक गुण सबके सुधारबाक संगहि संग पौधा सभक लेल आवश्यक सबटा पोषक तत्व का आपूर्ति सेहो करैत अछि। ताहि कारणे जैविक खाद के माटिक लेल दूधक संज्ञा देनाय अतिशयोक्ति नहि होयत। किसान भाई लोकनि, हरित क्रांति के लेल फसलक उन्नतिशील प्रजाति सभक संगहि संग रासायनिक उर्वरक सभक उपयोग सेहो बढ़ल। जैविक खाद सभक प्रयोग संकुचित होइत चलि गेल।

0: चूंकि एकटा रासायनिक उर्वरक जैविक खाद जकाँ सबटा आवश्यक पोषक तत्व सभक आपूर्ति नहि कऽ पबैत अछि, ताहि कारणे मृदाक उर्वरता घटैत गेल। किसान भाइ लोकनि, जैविक खादसँ कैकटा फायदा अछि। जैविक खादसँ माटिक भौतिक आओर रासायनिक स्थितिमे सुधार होइत अछि, माटिक जल धारण क्षमता बढ़ैत अछि, माटि भुरभुरा आओर सनरद भऽ जाइत अछि, जाहिसँ पौधामे गैसक आदान प्रदान आसानीसँ भऽ जाइत अछि। जैविक खादसँ माटिक संरचनामे सेहो सुधार होइत अछि, माटिक तापमान आओर नमी बनल रहैत अछि, मृदा अपरदन कम होइत अछि, पौधाक रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ि जाइत अछि, जड़ि आओर तनाक बेसी विकास होइत अछि, पौधामे तेज हवा, बेस वर्षा आओर सुखाड़क स्थितिक सहबाक क्षमता बढ़ि जाइत अछि। किसान भाइ, जैविक खादके इस्तेमाल करबाक लेल माटिक परीक्षण करा, फसलक जरूरतक मुताबिक रासायनिक खादक बदला जैविक खादक इस्तेमाल करबाक चाही। किसान भाइ लोकनि, जैविक खेतीक विधि रासायनिक खेतीक विधिक तुलनामे बराबर वा बेसीय उत्पादन दैत अछि, अर्थात जैविक खेती मृदाक उर्वरता आओर कृषकक उत्पादकता बढ़ेबामे पूर्णतः सहायक अछि। वर्षा आधारित क्षेत्रमे जैविक खेतीक विधि आओर बेसी लाभदायक अछि। जैविक विधि द्वारा खेती करबासँ उत्पादनक लागत तक कम होइते अछि, एकरा सङ्गहि सङ्ग किसान भाइक आय सेहो बेसी प्राप्त होइत अछि, सङ्गहि बाजारक स्पर्धामे जैविक उत्पाद बेसी नीक उतरैत अछि, जकर फलस्वरूप सामान्य उत्पादनक अपेक्षा किसान भाइ बेस लाभ प्राप्त कऽ सकै छथि। आधुनिक समयमे निरन्तर बढ़ैत जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमिक उर्वरा शक्तिक संरक्षण, सङ्गहि मानव स्वास्थ्यक लेल जैविक खेतीक रास्ता अत्यन्त लाभदायक अछि। मानव जीवनक विकासक लेल नितान्त आवश्यक अछि जे प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित नहि हो, शुद्ध वातावरण रहय आ पौष्टिक आहार भेटैत रहय। एकरा लेल अपनासभके जैविक खेतीक कृषि पद्धतिसभ अपनाबऽ पड़त, जेकि अपनासभके नैसर्गिक संसाधन आओर मानवीय पर्यावरणके प्रदूषित केने बिना समस्त जनमानसके खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकत।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

0: भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ETF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं, आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
4: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है। हालांकि दावे किए जाते हैं लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
3: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
4: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
3: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
4: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाएं, इसलिए कुछ मरीज

0: कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
1: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
0: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीज़ें बड़ी नज़र आती थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है, और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
1: इसमें क्या होता है?
0: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का टिटेनियम नीडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं, इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं, मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है। मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है, इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
1: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
0: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आँख में अवश्य डालना चाहिए। आँखों को कभी नहीं मलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि आँखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आँख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
1: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है अनूप जलोटा का।

सोनू निगम के स्वर में, क्षमा करें, जुबिन नौटियाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस का। मुख्य स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार काक भुशुंडी ने सविस्तार वो कथा कही जो मैंने तुम्हें सुनाई।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

शास्त्रीय संगीत आप सुना करते हैं दिन के 11 बजे। 11:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। वनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 पर।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा 1:15 पर। रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 पर। समय होगा फिल्म संगीत का। प्रादेशिक संगीत आप सुनेंगे दिन के 3:00। संतकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे तरुणा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुणा मिथिला संध्या 5:00। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे इसके तहत 5:40 पर।

विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:10 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे 7:00 से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:52 से। विज्ञान कार्यक्रम का समय होगा 8:15 से। चित्र भारती यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से, जिसे मैं अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00 से। यह कार्यक्रम भी हम आपको दिल्ली केंद्र से लेकर सुनवाएंगे। यह था आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

0: इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहिष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिको शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतोवा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार
1: मिथिला।
0: नमस्कार मिथिला सुनिए हर समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण हमरा संगे प्रतिभा प्रीति जी नमस्कार करै छी, सने स्वागत करै छी अपने के। नमस्कार है प्रतिभा जी।
1: नमस्कार प्रवीण है, और कार्यक्रम सुनने वाले समस्त श्रोताओं को भी प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार। प्रवीण जी, हम सभी हर दिन अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही करते हैं एक सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है, नीति श्लोक है, कहते हैं, सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र शरीर से मम बांधव। अर्थात इसमें कहना है कि सच बोलना हमारी माता के समान है, ज्ञान प्राप्ति पिता के समान है, धर्म का अनुपालन भाई के समान है, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान होने चाहिए। ये सद्वृत्तियाँ ही मनुष्य के निकट संबंधी होने चाहिए, और ऐसे ही सद्वृत्तियाँ मनुष्य के निकट संबंधी होते हैं।
0: अति उत्तम सुविचार सब दिन हम सब सुनै छी कार्यक्रम के शुभारंभ करते देरी। कोनो तरह सुविचार जीवन में अहम एकटा मूल मंत्र होइत अछि, ओकर अर्थ ओकर व्याख्यान करे यदि ओकरा पालन करै छी तो जीवन में सफलता भेटैत अछि, और जीवन होइते छै सफलता प्राप्त करय के लेल। जे परिश्रमी छथि, दिन राति परिश्रम करै छथि अपन लक्ष्य के प्राप्ति के लेल, तो हुनका लेल जतेक

0: महामानव सुविचार देने छथि, ओ सुविचार मूल मंत्र होइ छनि जीवन के। अस्तु कार्यक्रम के आगू बढ़बै छी और जनैत छी जे आजुक दिन के इतिहास में की सब अछि।
1: आज के दिन इतिहास के आईने में क्यों खास है, तो इसके तहत जो हम देखते हैं कि आज ही के दिन अर्थात 16 मई को हर वर्ष सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। 16 मई 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 16 मई 2013 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन को पहली बार स्टेम सेल निकालने में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में इसे लाइलाज बीमारियों के इलाज की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। आज की बात करें यानी 16 मई की, तो 1948 को समकालीन हिंदी का आधुनिक कविता के कवि और शीर्ष रचनाकारों में से एक मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। प्रमुख कविता इनकी जो है इसके बारे में बात करें तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये है। वहीं 1933 की बात करें तो 16 मई को ही प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार गुलशेर खां शानी का जन्म हुआ था। इनका प्रमुख उपन्यास है सांप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी और काला जल। इसके साथ ही बात करें तो आज के दिन यानी 16 मई को प्रवीण जी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि लोगों को डेंगू के खतरे के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में और सबसे बड़ी बात कि इसके निदान के बारे में यानी मच्छरों की वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना।
0: बहुत सुंदर। सब दिन हम सब किछु इतिहास के अंश मात्र लै छी, इतिहास में हर क्षण बनै छै, हर क्षण बनैत रहते। इतिहास से बहुत किछु हम सब सीखतो छी, इतिहास एकटा विषय छै, छात्र ओहि पर शोधो करै छथि और ओ शोध सँ इतिहास में जे बहुमूल्य चीज सब राखल अछि ओकरा गूढ़ मंथन कऽ कऽ आगू जीवन के लेल आगू आबय वाला पीढ़ी के लेल कल्याण योजना में लगबऽ चाहै छथि सबगण। तऽ आउ आब कार्यक्रम के आगाँ बढ़बैत सबसँ पहिले सुनै छी एकटा सुमधुर मैथिली गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहुत ही प्यारा संगीत
2: स्नेहा, पूजा बच्चरण तोर आत्मशक्ति आराधना के लेल अपन अपन सब के देवी देवता होइ छथिन। ओहि आराधना में जे सफल होइत अछि ओ जिंदगी सफल कऽ लैत अछि, आत्मसात करऽ के बात छै। आउ कार्यक्रम के आगा बढ़बै छी
1: और हम जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे अब हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे प्रवीण कुमार झा। आइए सुनते हैं प्रवीण जी से हालचाल।
2: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। आज मिथिलांचल सहित पूरा उत्तर बिहार आ पूरा संसार भरि में मिथिलांचल या उत्तर बिहार के वासी सब के स्त्रीगण सुहागिन जे छथि ओ बर के गाछ के पूजा करती है। आय वट वृक्ष पूजा के दिवस अछि और सुहागिन स्त्री सब सोलहो श्रृंगार कऽ वट वृक्ष के पूजा करै छथि और अपन सुहाग के अटल करह के कामना सहित पूजा अर्चना और व्रत उपवास सेहो करै छथि। ई आदिकाल सँ ई पर्व आबि रहल अछि, एकरा वट सावित्री कहल जाइत अछि। एकर एहन उत्सव अछि जे सुहागिन स्त्री सब आइ ब्रह्मे मुहूर्त सँ उठि कऽ स्नान ध्यान आदि कऽ कऽ समस्त फल आदि लऽ कऽ वट वृक्ष के नीचा आबै छथि, ओहिठाम पलथी मारि बैस और ओहि के बाद पूजा करै छथि आ फेर अटल धागा वट वृक्ष में बान्हि कऽ और फेर बाँस के बनल बेनी सँ हवा करैत वट वृक्ष के कहै छथि जे हे वट वृक्ष, अहाँ जेहने अटल छी तहने अटल हमर सुहाग है और हम सब सुहागिन रही सदा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सत्र 2026-30 स्नातक और सत्र 2026-28 के पीजी प्रथम सेमेस्टर के नामांकन हेतु 20 मई से ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया आरंभ भ जायत। विश्वविद्यालय में जाइन वेबसाइट पर जाकर अपन आवेदन दऽ सकै छी एहि महीना के 20 जून से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में भाषण प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल, एकर विषय छल भारत के बाल अपराध। कार्यक्रम में अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव कुमार कयलनि। एहि अवसर पर छात्र छात्रागण सन अपन अपन समुचित विचार रखलनि, कार्यक्रम सफल भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति के अध्यक्षता में प्रधानाचार्य गण, विभागाध्यक्ष गण और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी गण सब आ महाविद्यालय के IQAC और PG विभाग के DQAC समन्वयक के संग एकटा अति महत्वपूर्ण बैठकी कायल भेल। उस शिक्षा के व्यापक ढंग सँ संचालन हेतु शिक्षा वर्ग संचालन, नियमित मूल्यांकन, शैक्षणिक कैलेंडर के पूर्ण रूप सँ पठन पाठन में लागू करबाक हेतु सख्त दिशा निर्देश देलनि।

कुलपति कहलनि जे एहि मदमे कोनो तरहक समझौता नहि करबाक अइ ककरो। जे केओ एहि मदमे शिथिलता बरता हुनका कठोर दण्ड भेटत। पठन पाठन के कार्य में छात्र छात्रा गण के कोनो तरहक दिक्कत नहीं हेबाक चाही। दरभंगा बहेरी प्रखंड के वन डिहुली ऐतिहासिक लोरिक धाम में आयोजित भेल लोरिक महोत्सव सह मेला 2026 के काल्हि समापन भेल। एहि अवसर पर भोजपुरी मैथिली आ हिंदी गीत के अति उत्तम प्रस्तुति भेल। सांस्कृतिक संध्या में कलाकार गण सब उत्तम प्रस्तुति देलनि। श्रोता गण सब आनंद विभोर भ क एहि कार्यक्रम के आनंद लेलनि। मंत्र मुग्ध भेल श्रोता गण सब जहन अंत भेल तहन जय जयकार कयलनि। दरभंगा DMCH के सुपर स्पेशलिस्ट के छोटा जे लिफ्ट अछि से बंद अछि। आयुक्त निरीक्षण कयलनि काल्हि और ई देखलनि। ओहि में दवाई संकट, डॉक्टर के अभाव आ अधूरा विभाग सब के पोल खुलल। आयुक्त नाराजगी संग एहि व्यवस्था पर सुधार करबाक दिशा निर्देश देलनि। कहलनि जे आम जनता के इलाज दवाई में कोनो तरह कोताही आब बर्दाश्त नहीं कयल जायत। आम जनता मरीज सब से सेहो आग्रह कयलनि जे अहाँ सब बाहर से कोनो तरहक औषधि नहीं खरीदी। गृह विभाग देलक नोटिफिकेशन, प्रमोशन संघ भरत 10,469 पद और 10,468 दरोगा के बहाली होयत बिहार में। नीट UGC के दोबारा परीक्षा 21 जून का होयत आ अगला साल से ई कंप्यूटर आधारित परीक्षा होयत। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुनि रहल छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, स्वागत है यहाँ के हालचाल में। पर्यावरण अस्थिरता केवल प्राकृतिक संकट नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के चुनौती। कार्यक्रम भेल पर्यावरण चिंता और भूगोल विषय सेमिनार आयोजित भेल कायली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में। सोच कर देखू, नुक्कड़ नाटक सँ वैश्विक संकट पर कैल गेल जागरूकता। कलाकारगण सब पारिवारिक और वैश्विक घटना के प्रमुखता सँ नुक्कड़ नाटक माध्यम सँ उठेलनि। किस मौसम के जानकारी प्राप्त करी, उत्तर बिहार में कतेको स्थान पर गरज चमक के संग वर्षा होवे के संभावना बनि रहल अछि। आइ सँ लऽ कऽ 20 मई तक उत्तर बिहार में आंधी बारिश आ वज्रपात के आसार अछि। किसान सब अलर्ट मूड में आबि गेल छथि। और कार्यक्रम में आब आगा बढ़े छी।
2: आगे बढ़ते हुए प्रवीण जी लेते हैं एक सूचना, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए.के. गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 9430029353। एक और मोबाइल नंबर है 0627222481। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे।
1: हाँ, और कार्यक्रम के आगा बढ़े तो हम सब गप करी जे आई

0: अपने कहने चलिए डेंगू दिवस अछि,
1: राष्ट्रीय डेंगू दिवस।
0: जी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और वो अंतर्राष्ट्रीय हो में टाइम नहीं लगे छे। डेंगू के नाम लेते देह से हट जाते अछि। प्रतिभा जी, हम देखने छी जे एकटा मच्छर की कह सकैत अछि, ये शोचनीय प्रश्न अछि। खास कर आब ई जे नव, पहले मलेरिया छल, एखनो होइए, लेकिन ओ एकटा मच्छरे से होइ छल, ओ साधारण होइ छल, एहन बात नहि छै, ओकर सुधार तुरंत भऽ जाइ छलै। लेकिन ई डेंगू यदि एक बेर भऽ गेल अहाँके तऽ अहाँ 6 महीना के लेल बहुत कमजोर भऽ जायब, और एकर उपचार बेसी औषधि नहि निर्माण भेल छै, एकर उपचार मात्र सामान्य जे आयुर्वेद छै ओहिसँ होइत छै। कारण आ निदान की भऽ सकैत अछि, ई आइ एकटा शोचनीय प्रश्न अछि। आ आजुक दिन हमसब एहि पर विचार विमर्श बैठक और संचालन हेतु कार्यक्रम के आयोजन करब। विभिन्न तरहक बैठकी होइत, बड़का बड़का विशेषज्ञ डॉक्टर सब ओहि पर बैसता, मंथन करता जे किए और कोना एहिमे हमरा सबके जानकारी कतेक अछि कतेक नहि अछि, एकर प्रचार प्रसार केना रोकल जाय, एहि विषय पर गपशप भऽ सकैत अछि। डेंगू एकटा मच्छर जनित वायरल अछि जे शरीर में मच्छर के कटला सँ होइ छै। मूल बात करब तो ओ कहब जे कोनो जे गंदा पानि छै ओहिमे जे मच्छर उत्पन्न होइ ताहि सँ भऽ जाइ छै, से नहि। आधुनिक युग में घर घर से कूलर माने गमला एहि सब रहै छै, जाहिमे स्वच्छ जल अहाँ भरि कऽ छोड़ि दैत अछि, या अपन छत पर चार पर कोनो टायर फेंक देलहुँ जाहिमे वर्षा के पानि भेल आ ओ पानि ओहिना रहि गेल। एहन जे पानि होइ छै ओहिमे जनित होइए ई डेंगू मच्छर।
1: कहते भी हैं कि गंदे पानी में डेंगू का मच्छर नहीं पनपता है, साफ पानी में। साफ पानी क्या, कि जो आपने कहा कि बारिश की पानी है गमले में या टायर में या कोई खाली डब्बा है इस तरह का जिसमें वो जमा हो गया है पानी, तो इस तरह के पानी में वो डेंगू का मच्छर ज़्यादा पनपता है और दिन में काटता है यह मच्छर, ये भी एक सत्यता है, सत्य बात है। तो घर के आसपास हमें हमेशा ही चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पानी तो नहीं जमा हो गया, और उसे साफ़ सफाई, देखिए साफ़ सफाई तो हमारे जीवन का, जीवन यापन का, जीवन में दिनचर्या का एक अंग ही है कि हम सभी हमेशा अपने घर की सफाई करते हैं, आसपास की सफाई करते हैं, तो ध्यान देते रहना चाहिए। कोई ऐसा खाली गमला तो नहीं है, कोई डब्बे तो इस तरह के नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ है। और डेंगू जो है उसमें बुखार उसमें देखने को आता है, जो मच्छर के काटने से, मच्छर काट लिया कभी आपको तो फिर उससे बुखार से पीड़ित होते हैं, बदन में दर्द, और सबसे पहले इम्यूनिटी ये कम कर देता है, बहुत ही कमज़ोर बना देता है। इसकी कोई, आपने कहा कि वैक्सीन दवा नहीं है, रोकथाम ही इसका इलाज है। तो साफ सफाई रखेंगे, मच्छर नहीं पनपे, ये हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम सभी बचाव कर सकते हैं डेंगू से।
0: जी सत्य कहलहुँ, आगू गप सब करब यही डेंगू विषय पर, लेकिन आप सुनै छी एकटा फिल्म संगीत।

0: बल्कि उम्र के साथ साथ रिश्तों में विश्वास, प्यार और एक दूसरे के लिए जो समर्पण की जो भावना है वो है, सुख दुख में साथ देने की जो भावना है, साथ ही पर्यावरण बचाने का भी मैसेज देते हैं कि हम सभी जो है हमारे देश में, हमारे खास करके मिथिला में, और देश की ही बात करें तो कभी पीपल के वृक्ष की हम सभी पूजा करते हैं, कभी हम सभी बट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो महत्ता है और भी बढ़ जाता है।
1: जगह कहियो ना हम सब प्रकृति के पूजा करै छी, एहन उत्सव महोत्सव बहुत छै, अहाँके छठि होइए ओ की अछि, साक्षात प्रकृति और प्रकृति प्रदत्त सामग्री के पूजा हुई और दिनकर के उपासना क क तई सनातन में हम सब प्रकृति के प्रेमी छी, प्रकृति से हम सब अभयदान प्राप्त करै छी, प्राप्त करैत रहब, तई प्रकृति से पैघ किछ नहीं अछि,
0: तो इसलिए संरक्षण इसकी बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी पेड़ की कटाई करके अपना काम, अपना स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं, लेकिन पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। आपने कहा कि बट वृक्ष से प्राणवायु जो है वो हम सभी जानते हैं कि वृक्ष से ही प्राणवायु हमें प्राप्त होता है, हम सभी इस बात को जान रहे हैं और इसी चीज़ को भोग रहे होते हैं। हम जो आज आप जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, हम सभी जानते हैं, हमारे घर के बच्चे भी जान रहे होते हैं ये बात, लेकिन हम सभी पेड़ लगाने में, वृक्ष की रुपाई में, रूप उसे लगाने में बहुत ही कंजूसी सा करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जगह आपके पास जितना ही है उसी में कोशिश कीजिए कि छोटा सा भी कोई ऐसा पेड़ पौधा है तो उसे लगाया जा सके, और इसके साथ ही प्रकृति की जो देखभाल है उसमें हम सभी ने पहले ही अभी बात की है कि साफ़ सफाई भी बहुत ही आवश्यक है, और यदि साफ़ सफाई नहीं है तो बहुत तरह की बीमारी, जैसे कि आपने अभी बात की है कि डेंगू की, और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है, तो इसके लिए आज का जो दिन है उसके बारे में सिर्फ बातचीत करने से नहीं होगा, हम सभी एक नियम बनाएं कि 8 दिन पर भी कम से कम अपने आसपास की सफाई जरूर करें, कुछ समय निकालें कि जैसे कहते थे ना कि हर रविवार मच्छर परवार, डेंगू भगाओ जिंदगी बचाओ, तो ये सब चीज़ हम सभी जो स्लोगन है वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन बस इतने भर से ही काम चलने वाला है नहीं, हम सभी को इसके साथ जो कर्म है वो भी करना पड़ेगा।
1: हाँ सत्य कहलाम, देखो जीवन क्रम में बहुत किछु आदमी के सीख करो पड़े छे, वही समय खास करी जे युवा वर्ग छथि, छात्र छात्रागण सब, हुनका सब में बेसी ऊर्जा हेबाक चाही जे अपन घर के, अपन आसपास के केना हम साफ सुथरा राखी, ओहि में हुनकर योगदान बेसी हेबाक चाही, लेकिन देखल गेल है जे हुनका सबके जखने कनियो आपियत भेटै छनि, फुर्सत छनि, तो ओ सब से मोबाइल लऽ कऽ बैसि जाइ छनि।
0: बिल्कुल,
1: तो ई काज के करत, ई काज करता अभिभावक गण, माता पिता या बूढ़ दादा दादी, नहीं, ई ज्ञान अहाँ के हेबाक चाही जे हुनकर उम्र भ गेल छनि, आब साफ सफाई अहाँ के कंधा पर अछि, तो कि अहाँ स्वच्छता में निवास करय चाहे छी कि नहीं, जहिना घिनायल छै जगह ओही में बैस के मोबाइल देखय चाहे छी, ई अहाँ पर अछि, अहाँ सोचू ए विषय पर। हम आह्वान करै छी जे छात्र छात्रा, युवक गण सब, आवा वाला पीढ़ी के लेल, अपना लेल एकटा एहन प्रकृति के निर्माण करू, पर्यावरण के निर्माण करू जे अही लेल सहायक होय।
0: ऑनलाइन की बात की आपने, मोबाइल देखने की बात की है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं मोबाइल का, और ऑनलाइन सुरक्षा क्या है, डेटा गोपनीयता क्या है, ये चीज़ भी अभी तक उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हमारा जीवन विज्ञान पर निर्भर है ये तो हम सभी जान रहे हैं, बिजली पानी की बात करें या वाहन की बात करें या ऑनलाइन डिजिटल क्रियाकलाप को ही देखा जाए तो पाते हैं कि मानव जीवन विज्ञान जो है इसी माध्यम से चल रहा है। विज्ञान हमारे जीवन को सहजता और सरलता भी प्रदान किया है प्रवीण जी, और बात करते हैं यदि स्मार्टफोन की, आपने कहा कि सभी बच्चे स्मार्टफोन लेके बैठे होते हैं, सभी लोग, खास करके देखा जाए घर में 4 लोग हैं तो 4ों के हाथ में एक एक मोबाइल रहेगा, आपस में बातचीत करने से भी अधिक समय वो फोन पे ही बिताते हैं, स्मार्टफोन पे बिताते हैं। तो स्मार्टफोन सही मायने में डिजिटल मामले में स्मार्ट तो बना ही दिया है हम सभी को, पर ये जो ऑनलाइन कार्य है जैसे कि बैंक से लेन देन है, फोटो वीडियो है शेयर करना, या इंटरनेट से विभिन्न मामलों में जानकारी हासिल किए जाते हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए डेटा की गोपनीयता बहुत ही आवश्यक है। कलाम साहब कहते भी थे कि विज्ञान मानवता के लिए वरदान है अगर इसका सही इस्तेमाल हो, तो सही इस्तेमाल होना चाहिए। और डेटा सुरक्षा की जहाँ तक

0: गोपनीयता की जहाँ तक बात है तो डिजिटल दुनिया का ताला चाबी से कहा जाता है बहुत ही आवश्यक है यह, क्योंकि प्रवीण जी आज बैंक से लेकर आधार तक सब कुछ मोबाइल में है और यदि इसे लॉक नहीं रखें तो एक ही क्लिक में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। कितना बार ऐसा होता है कि फेक जो एक आपको आएगा लिंक आएगा, कोई ऐसा मैसेज आएगा कि ऐसे करने से आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, तो ये सब अगर आप बिना सोचे समझे उसको क्लिक कर देते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा ही खाली हो जाता है अकाउंट से, या आपकी जानकारी जो है वो वायरल हो जाती है। तो ऑनलाइन खतरे की बात यहाँ है, फिशिंग जिसमें फर्जी एसएमएस में कहा जाएगा कि आपका केवाईसी बंद हो गया है, घबराहट में आप क्लिक कर दिए तो बैंक डिटेल की चोरी हो जाती है। उसी तरह से ओटीपी फ्रॉड में भी कहा जाएगा कि बैंक में से बोल रहा हूँ या बैंक से बोल रही हूँ, ओटीपी बताइए। तो हम सभी ये जानते हैं कि बैंक से पैसे निकालने में या ऐसा में कभी भी ओटीपी बैंक ओटीपी नहीं मांगता है। तो इस तरह से हम सभी इस बात को जान रहे होते हैं, लेकिन अचानक से घबराहट में कभी कभी ऐसा होता है।
1: ओटीपी भेल की बुझलिए, पहले जमाना में बड़का संदूक होइ छलै, ओही में सबटा माल खजाना रहै छलै, चीनी से लक और वस्त्र सब। तो धिया पुता सब बाबा के वो चाबी जो तई पर नजर रहे छले, कखन बाबा छोड़ के नहा ले जेते जो ओय में से खोल कम चीनी फांकी। तो वह भेल ओटीपी। तो और अहाँ के ओटीपी भेल जो संदूक में बंद या बैंक में जो बंद माल खजाना सब है तकरा अहाँ चाबी के रूप ओटीपी नहीं दिए।
0: बिल्कुल। तो ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कुछ बातों का यदि हम सभी ध्यान रखते हैं तो साइबर ठगी जो है इससे हम बच सकते हैं। जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि पासवर्ड जो होता है वो साधारणतः हम सभी 1, 2, 3, 4 मतलब नॉर्मल डिजिट लगा देते हैं, या फिर अपने जन्मदिन का डिजिट लगाते हैं, अपने मैरिज एनिवर्सरी का डिजिट लगाते हैं, तो ये सब नॉर्मल है, इस चीज़ से बचना चाहिए। और फिर इसके साथ ही हर ऐप का अलग अलग पासवर्ड होने से भी पासवर्ड लीक होने का और अकाउंट खाली होने का कोई भी खतरा नहीं रह जाता, यानी एक ही पासवर्ड आप हर जो है ऐप के लिए नहीं लगाइए। प्रलोभन वाले ऐप से जैसे लॉटरी जीतें, केवाईसी अपडेट करें या बिजली कट जाएगी, इसे सावधान रहना होता है हम सभी को। यूपीआई नियम को जाने और हम सभी जाने, और पैसे की लेन देन में पिन लगता है, पिन सिर्फ भेजने में लगता है, पैसे निकालने में नहीं, ऐसा हम सभी ध्यान रखें। और यदि हम सभी सावधान रहते हैं तो ऑनलाइन ठगी से निश्चित तौर पर बच जाते हैं, बचे रह सकते हैं। प्रवीण जी
1: धन्यवाद। और युग में सतर्क रही, सावधान रही और ज्ञानक पूरा उपयोग कर जीवी, किएक तो स्मार्ट युग अ विज्ञान के युग अच्छ, कनिको साधारण सब गलती यहाँ कलूँ तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तई सतर्कता रही, कोनो तरह के ओटीपी वगैरह मोबाइल के लेन देन में सतर्क रही।
0: और सबसे बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है समय के लिए, तो समय अभी हम सभी को अब ये कह रहा है कि अब चलने का समय नजदीक है।
1: हाँ, तो आओ तो चलते, चलते, चलते। पहले सुने एक फिल्म संगीत।

0: अगला है समझाने
1: के साथ लेते हैं आज के इस अंक से विदा। मिलेंगे फिर अगले अंक में, तब तक के लिए
0: हमारा प्रवीण के
1: और प्रतिभा प्रीति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घुराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाएब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए।

0: यही ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड

0: कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय

0: डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के आम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी

0: महाजारही के दौरान अबू धाबी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर्स की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल यूएई पहुंचे थे। माहदों में अहम शराकत दारी का माहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तबानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जैटन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती माहदे के बाद भारत यूरोप यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम माहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अजम को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरकर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर मौजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे 33 रुपए से 16 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरहें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनशियात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनशियात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN Kao यादगारी लेक्चर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म जब्त का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरतब होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का ये कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न

भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हब्स वाले मौसम की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो

0: बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में ये मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान के साथ हुई दो तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए, जिनमें LPG की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड

0: शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपए से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो तो विद्यालय सुसंगत प्रावधानों के तहत ही ऐसा करेंगे। उन्होंने अन्य प्रतिबंधित शुल्कों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। निजी विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालय के सूचना पट और वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म का पैटर्न बार बार नहीं बदलेंगे। आवश्यकता होने पर विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षक अभिभावक संघ से इसकी अनुमति लेनी होगी। अभिभावक सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से पुस्तकों और पठन पाठन सामग्री खरीद सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा को शुल्क बकाया रहने की स्थिति में कक्षा परीक्षा अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इसके तहत विभाग के 100 दिनों के कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि TRE4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्यों के साथ अध्यापन की अनिवार्यता पर विचार करने की भी बात कही। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पटना स्थित विभागीय कमांड कंट्रोल सेंटर से वैशाली और अररिया जिला अस्पताल की ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग की। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर चल रहे इलाज का फीडबैक लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सुविधाओं की जानकारी नियमित रूप से देने और शिकायत तथा सुझाव के लिए IT आधारित फीडबैक व्यवस्था विकसित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित समय से पहले तैयारी करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्यों में तेजी लाने, तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने और बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुखाड़ वाले इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान में प्राप्त सभी आवेदनों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने 31 मई तक प्राप्त सभी आवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही श्री जायसवाल ने एग्री स्टैक अभियान को देखते हुए 6,60,000 जमाबंदियों में सुधार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों को बिहार कृषि ऐप से हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही मगही, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका में भी खेती की जानकारी मिलेगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने बताया कि ऐप
पर इस साल के अंत तक 80 लाख किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। राज्य के सभी सरकारी विभागों में किराए पर चलने वाले डीजल पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले को अमल में लाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में नए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को पटना और नालंदा तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव को सारण जिले का प्रभारी बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को पूर्वी चंपारण और शिवहर जबकि कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को गया जी और गोपालगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 20 सूत्रीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में संबंधित मंत्री अपने आवंटित जिले में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज नगर

0: परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की पत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्री चौधरी ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि कृष्ण भूषण कुमार की पिछले दिनों अपराधियों ने कार्यालय कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि प्रसाद भुयाल और टेक प्रसाद की पीठ ने इस आशय का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल से 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लागू कर दी थी। इसके विरोध में सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द ही नई नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों का सृजन किया है। गृह विभाग के अनुसार सबसे अधिक 27,510 सिपाही और समकक्ष पदों पर बहाली होगी। वहीं दारोगा के 20,937 पद हैं। इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 10,468 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत आर्मी भर्ती कार्यालय दानापुर ने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा पटना और आरा में आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, सिवान और सारण जिले के लगभग 48,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीबी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTE की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के अमृतसर स्थित खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे बिहार के छात्रों पर आपराधिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। घटना को लेकर 300 छात्रों ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
4: दिनांक 16 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की

0: संभावना है।
1: इधर आज सुबह मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: प्रदेश में आज श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री पूजा की जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पटना की एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के दोषी अब्दुल करीम, चंदन यादव और प्रवेश कुमार को 13-13 साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव से पुलिस ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 95 लाख रुपए के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को बांका जिले के पंजवारा से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर एसएसपी और इमिग्रेशन विभाग की टीम ने एक सोमालियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अहमद फराह के रूप में हुई है, जो बिना वैध कागजात के सीमा पार नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिया जिले की मरंगा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 91 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 585 लीटर शराब के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। शिवहर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए से अधिक बढ़े। दैनिक जागरण लिखता है, निजी स्कूलों में री एडमिशन शुल्क पर रोक। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को, अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित एग्जाम। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पीएम मोदी की मेगा डील, यूएई से 48,000 करोड़ निवेश, एलपीजी करार भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई सीनियर आईएएस अफसर का तबादला। आज अखबार लिखता है, सूबे में अब मध्यमा की भी होगी पूरक परीक्षा। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर करिया अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपए से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
4: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
3: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
4: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा में जारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं

0: बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए,
6: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने

0: नए जमाने के
1: आकाशवाणी दरभंगा सुनते रहिए।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

फसलों के बाद दोबारा हाजिर हूँ अंजुमन लेकर। सामीन, जिंदगी में अमन सुकून के लिए इंसानों का आपस में मिलजुल कर रहना बेहद जरूरी होता है। मौशी की बात हो या खानदान की, हर जगह अमन सुकून इंसानी जिंदगी को बका बख्शती है। घर व खानदान और मौशी में बाहमी इत्तेफाक से दुश्मनी और नफरत खत्म होती है और मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। मिलजुल कर रहना दिल व जहन को सुकून बख्शता है तो तनाव को भी वो कम करने में बहुत मददगार होता है। सामीन हज़रात, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए एक खूबसूरत सी गजल से अंजुमन को मुअत्तर करते हैं। समाप्त कीजिए ये गजल।

एक बार फिर अंजुमन में आपका खैर मकदम है। सामिन, मिलजुल कर रहने से हम घरों, खानदान, मुआशरे और मुल्क और दुनिया में आई बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। इतिहाद से रहना कामयाबी की जमानत देता है और साथ ही ताकत को जाहिर करता है। मिलजुल कर रहने की आदत इंसानों में एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और साथ देने के जज्बे को पैदा करती है। हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल वक्त हुआ जाता है सामिन हजरात की आज की खास पेशकश ड्रामा समाप्त किया जाए। आइए रुख करते हैं आज की इस खास पेशकश की जानिब। उन्वान है मिर्जा गालिब की जिंदगी पर मबनी ये फीचर, अजब आजाद मर्द था मिर्जा गालिब। तहरीर अब्दुल समद की और पेशकश कमाल जाफरी की है।

को चांदनी का खर्च हो रहा है। शहर में तालीम और दो चार गांव तक ये रखे, एक तरफ करीने के पेचवान रखा है, कालीन के किनारे पर चांदी का पानदान पड़ा है, कमरे में तीन चार पीतल के उगालदान है और एक कोने में बड़ी सी चिलमची धरी है। मिर्जा एक गांव तकिए का सहारा लिए कुछ लिखने में मशगूल है। बस जरा आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से आगे बढ़िए, देखिए मिर्जा

खुदा क्या है? अल्लाह अकबर। ये दुनिया की क्या गोरखंदा है, न दिल लगाए बने न दामन छुड़ाए। इसी तरह इसके खालिक के इकरार इनकार का मसला और इकरार पर इसरार करने वालों के किरदार और गुफ्तार में तजाद। औरों की बात क्यों करो, खुद मुझी को देखो। जुर्दो तकवा से दूर का वास्ता नहीं।

0: भी बंदो, ए भी बंदो, ये तू कहाँ रह गई?
1: आई दो दिन रह गया।
2: मैंने तुझे कुछ कहा था?
1: कि मम्मी ने तेरे से अर्ज कर दिया है।
2: आई नहीं?
1: अभी आ रही बेगम साहिबा, एक खत लिख रहे हैं। फरमाया है कि खत पूरा करूँ और फिर आता हूँ।
2: खत? फिर वही खत? आफत में जान ही मुगल माई खत से। सुबह खत, शाम खत, सोते खत, जाते खत।
3: अरे रे रे रे, ये क्या शोर मचा रखा है? बाबा अजीज है, अकारिब है, दोस्त है, मुरब्बी है, मैं तो किसी गैर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर ये तो मेरे अपने हैं। अब किसी के खत का जवाब मुझ पर वाजिब हो तो कैसे चुप लगा जाऊं? कुछ खतों के जवाब लिखने अभी बैठा था कि नाक में दम कर दिया।
0: मैं जानती हूँ जैसे खत आप लिखते हैं, इन खतों में मेरे दिल्ली के क्या क्या सामान आपने नहीं किए। इन खतों में आपने मुझे गले का फंदा, पांव की बेड़ी, मुसीबत, भला सभी कुछ तो कह दिया। अपने शागिर्दों और दोस्तों सबने ही दलील किया है।
3: ओहो बेगम, ये मेरी बदकिस्मती है कि घर में तुम मुझे नहीं समझती। और खैर छोड़ो, ये बताओ बुलाया किस लिए है?
0: इसलिए कि आज तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जिंदगी किन किन मुसीबतों से कट रही है। कि अगर सुबह को मिल गई तो शाम की फिक्र है, और अगर शाम को मिल गई तो सुबह की। इधर उधर से कुछ आ गया तो दो दिन निकल गए। यहाँ तो बारह में खेती की सी बात है। बरस गया तो हरियाणा, समय वीरानी है बंजर, कुछ भी तो नहीं मिलता।
1: मिर्जा साहब, ये खत है।
3: खत?
1: जी, अभी कमी दारोगा ने दिया है, कहते हैं जरूरी खत है, सरकार ने हर कारा लाया था।
0: खत खत खत, इन खतों से मैं लाख मिलता
3: हूँ। अब जरा चुप भी करो, खत तो पढ़ लेने दो।
0: बनो, ये खत पसंद है तो इतना काम कर कि कल्लू को जरा महाजन के पास भेज दे कि जाए और 10 रुपए और ले आए। महाजन से कह दे कि हम जल्द ही सब चुका देंगे। रामपुर से महल आने ही वाला है, अभी जाती हूँ।
3: वो अभी कोस रही कि मेरे आबाओ अजदाद और अपने मुकद्दर को। दिल्ली कॉलेज में फारसी के मेर मुदर्रिस का तकर्रुर होने वाला है। अंग्रेजी हुकूमत के सेक्रेटरी थॉमसन साहब ने मुझे इस नौकरी के लिए बुलाया है।
0: तू बड़ा कारगर है, ये मौका अच्छा है। इज्जत आबरू का काम है, घर के घर नहीं मिल रहा है, तो बुलाया है।
3: कल ही तो खैर जाऊंगा, देखिए क्या होता है। लेकिन ये साहब लोग मेरी फजीलतें ही में क्या जाने।
0: ओह, फिर वही आला काली, फिर वही तकबर। खुदा का नाम लीजिए और शुक्र बजा लाइए कि ऐसा मौका नसीब हुआ।
3: हाँ, शुक्र बजा लाता हूँ हुजूर, शुक्र बजा लाता हूँ। खुदा से भी पहले आपका। और
1: बाहर बैठक में आपका कोई इंतजार कर रहे हैं?
3: आवाज ही आया, अभी हाजिर हुआ। दूसरे दिन मिर्जा थॉमसन साहब से मिलने के लिए चले। राही सफाचट, नाजुक बारीक मूछें जिन्हें ताव दे रखा था, बड़ी बड़ी गिलासी आंखें, सुर्ख और सफेद रंग जिसमें चंपई दमक थी, सर पर लंबे लंबे पट्टे, कलमों पर लटके हुए बाल, सर पर एक पल्ले की हल्की सी टोपी जिस पर कशीदे का काम था, बदन पर तंजेब का अंगरखा, सफेद पाजामा और पांव में गुथीली जूती। ये है मुख्तसर से अल्फाज में उनकी तस्वीर, अपने जमाने का काबिल तरीन जौहर, आबाओ अजदाद की शौकत पर नाज करने वाला, खुद को ताब में बर्क और बख्शिश में अब्र कहने वाला तुर्कजादा, खुद पर रोता और रोजगार पर हंसता हुआ, खुद को बेचने के लिए घर से निकला। इधर मिर्जा ने पालकी में कदम रखे, उधर बेगम सजदे में गिर गई।
0: इलाही, तू बड़ा कारसाज है, तू ही आबरू रखने वाला है। वो जल्द लौटे और कॉलेज में नौकरी का मुस्ता सुनाए। आमीन।
3: उधर मिर्जा की पालकी थॉमसन साहब के बंगले के सामने रुकी। मिर्जा साहब पालकी में बैठे इंतजार करने लगे कि हस्बे दस्तूर कोई साहब उनके इस्तकबाल को आएंगे, लेकिन काफी वक्त यूं ही गुजर गया।

0: इतने में एक जमादार आया और मिर्जा से कहने लगा,
1: सरकार को कैसा बहादुर से मिलना है। हाँ भाई, साहब अपने कमरे में बैठे हैं, आइए। भाई दस्तूर तो ये है कि साहब लेने को आए, जब वो इस्तकबाल को आएंगे तभी तो उतरूंगा। जाओ उन्हें खबर कर दो
2: जो हो।
1: लीजिए साहब खुद ही इधर आ रहे हैं।
3: मिर्जा साहब क्या बात है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
1: हुजूर जब जब मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ आप इस्तकबाल को खुद तशरीफ लाए। वैसे भी दस्तूर यही है, इसमें क्यों फर्क आए।
3: मिर्जा साहब पहले जब आप आता था तो वो रस्मी मुलाकात होता था, हम आपका इस्तकबाल करता था, पर आज आप हमारे पास नौकरी के लिए आया है इसलिए हम तुम्हारा इस्तकबाल करने कैसे आता।
1: ओ जनाब का शुक्रिया, मैं तो मुलाजमत इसलिए करना चाहता था कि इससे मेरे गुरूर वकार में इजाफा होगा, मगर देख रहा हूं कि जो इज्जत पहले थी उसमें भी कमी आ रही है। अगर मुलाजमत के माना मर्तबे में कमी के हैं तो ऐसे मुलाजमत को दूर से ही सलाम, हम वापस जाते हैं, खुदा हाफिज। मिर्जा ने कहारों को वापस चलने का हुक्म दिया। पालकी वापस जा रही थी, मिर्जा खुश थे कि उनका जौहर

न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह न सही घर मेरे अशार में माने न सही।

0: मिर्ज़ा की इब्तदाई शायरी की रविश का अंदाजा इस हिकायत से बखूबी होता है जो मिर्ज़ा की अपनी ज़बानी सुनी गई है। मीर तकी मीर ने, जो मिर्ज़ा के हम वतन थे, उनके लड़कपन के अशार सुनकर कहा था कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो ये लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा।
1: और मिर्ज़ा लाजवाब शायर बने। उनके इब्तदाई अशार में फारसियत का रंग चढ़ा हुआ था। इस रंग को छोड़ने के लिए मिर्ज़ा के दोस्तों ने बार बार इसरार किया। मिर्ज़ा की बहुत सी गजलों में अपने दोस्तों के इन एतराजात की तरफ इशारा है।
2: मुश्किल है ज़िबस कलाम मेरा ऐ दिल, सुन सुन के इसे सुखन वराने काबिल, आसान कहने की करते है फरमाइश, गोयम मुश्किल मगर न गोयम मुश्किल।
0: और इसके बाद ही उनके कलाम में वो सादगी नजर आई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस दौर की ही उनकी ये गजल मुलाहिज़ा फरमाइए।

0: राधे राम मौजूद नहीं, खाली हाथ जाता हूं। अगर नाप सीधा बख्श दिया गया तो खैर, अगर बास पुरस हुई तो शेर मुकिर है और हाफिया साफिया है। दोज़खे जावेद है और हम है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के विचैन न पाया तो किधर जाएंगे।
1: वही मिर्जा जिनकी शगुफ्ता तबीयत कभी महफिलों की जान हुआ करती थी, जमाने के हाथों कुछ यूं परेशान हुए कि बजुज हसरत मर्द कुछ बाकी न रहा।
0: हो चुकी खालिद बलाए सब तमाम, एक मर के नागहानी और है।
2: 15 फरवरी 1869 ईस्वी को अदब और शेर का ये दरख्शंदा आफ्ताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उस वक्त मिर्जा की उम्र 73 बरस की थी। मौत से पहले उनकी जबान पर ये शेर था,
0: दबे वापसी बरसरे राह है, अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह है।
1: जमाने ने उनकी वो कदर न की जिसके वो मुस्तहक थे, शायद इसलिए कि मिर्जा अपने जमाने से बहुत आगे थे। वो दरबारदारी और उमरा नवाजी की हुदूद को पार करके एक ऐसे आलम ख्याल में पहुंच गए थे जहां चांद और तारों की हकीकत खुल जाती है, जहां आसमान बेजाए मूर से ज्यादा वक्त नहीं रखता, जहां हस्ती वहम से ज्यादा कुछ नहीं। मिर्जा जमाने की बेकदरी को खातिर में ना लाते थे, वो जानते थे कि उनकी शोहरत मौत के बाद फैलेगी, इसलिए आज जब उनका जिस्म मिट गया है, उनकी रूह शेर का लबादा ओढ़े मौजूद है, उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है।
3: ये लाश बे कफन

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बलमा से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और आशा भोसले। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन से अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत समीर की है और संगीत है नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एके गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9430029353। दूसरा नंबर है 06272222481। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बेटा से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाश।

दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहरा से। आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने और संगीत से सजाया है विजू साह ने।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और साधना सरगम। गीत के बोल समीर के और इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत। पहला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है अनूप जलोटा का।

पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है लता मंगेशकर का।

सोनू निगम के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में, कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, आज की पहली सभा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे कबीर भजन राग शुद्ध भरारी में पंडित जसराज के स्वर में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कबीर भजन राग शुद्ध भरारी में। आवाज थी पंडित जसराज की। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए अब श्रोताओं आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

फिल्म बलमा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और नितिन मुकेश की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आंधी तूफान से लिया गया एस जानकी की आवाज में।

फिल्म मीरा का मोहन का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत से सजाया था अरुण पौडवाल ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सलामी से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में।

फिल्म जुनून का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की आवाज में। श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आगे भी हम आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञों में डॉक्टर एके गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर है 9430029353। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0627222481। समय याद रखें रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। तो इस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़े और अपने नाते रिश्तेदारों को, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कहें इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी, जो भी अगर वो उच्च रक्तचाप के शिकार हैं या फिर उनके घर में कोई इसके मरीज़ हैं, तो उनके बारे में क्या लक्षण हैं, क्या सावधानियां हैं पता करें और अपनी जिज्ञासा को शांत करें। आइए अगला गीत अब सुनते हैं फिल्म सौतन की बेटी से लिए गए गीत को। इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने और बोल हैं समीर के, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

तो श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का, और अभी आप सुन रहे थे फिल्म सपने साजन के से लिए गए इस गीत को अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। और अब समय हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए मिलते हैं आपकी रेडियो सखी प्रेरणा से कार्यक्रम नारी संसार में।

नाड़ी संसार सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज फिर से होगी कार्यक्रम में ढेरों सारी बातें, साथ ही सुनेंगे प्यारे प्यारे फिल्मी गीते। बहनों, आज हर सुहागिनों महिलाओं के लिए बेहद खास दिन है। वट सावित्री व्रत की पूजा, सुखी विवाहित जीवन, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए हर सुहागिन महिलाएं करती हैं। यह व्रत हर साल जेठ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जो आज के दिन है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत के दिन यानी बरगद पेड़ पर कच्चा सूत बांधने से पति की लंबी आयु बढ़ती है और संकट और बाधा दूर होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, प्यार और मधुरता भी बनी रहती है। बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है और माता सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाए थे। सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने पति की कुशलता एवं दीर्घ आयु की कामना के लिए यह व्रत रखती है। वट सावित्री का व्रत और पूजन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार शादी के बंधन को जन्मों जन्मों या 7 जन्मों का माना गया है। यह एक पवित्र बंधन है और इस बंधन की पवित्रता और ताजगी हमेशा बने रहें। पति पत्नी का आपस में प्यार और विश्वास बना रहे, साथ ही आपका पारिवारिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह पावन पर्व जीवन में आपकी अपार खुशियां, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि लेकर आए। बहनों, इसी कामना के साथ आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, बातें और भी करेंगे, आगे बहुत सारे चर्चा करेंगे हम, लेकिन आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, और आपको ये गाना जरूर बहुत पसंद आया होगा। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं गाड़ी संबंधी एक सूचना। श्रोता, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 9430029353 0627222281। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2016 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में बहनों आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए अंतराल के बाद बातें करते हैं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: बहनों, हमारी सेहत पर ही पूरा परिवार की खुशहाली टिकी होती है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तभी हम अपने बच्चों और परिवार की बेहतर देखभाल कर पाते हैं, साथ ही हम खुद भी ऊर्जावान बने रहते हैं। समय के साथ महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने पर महिलाओं में गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्या होने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। महिलाओं में उच्च रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआती लक्षण हमेशा दिखाई नहीं देते। यह समस्या हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसे बीमारी का मुख्य कारण बन सकती है। महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न होने के पीछे हार्मोन बदलाव, जीवन शैली और कुछ विशेष शारीरिक स्थितियाँ प्रमुख कारण हैं। खान पान में लापरवाही, अधिक नमक वाला भोजन, सोडियम और फलों और सब्जियों का कम सेवन करना, शारीरिक रूप से व्यायाम न करना, लंबे समय तक तनाव, चिंता या अवसाद के कारण भी उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। बहनों, यहाँ तक कि आपका वजन और मोटापा होने के कारण गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप से संबंधित जटिलता भी देखे जाते हैं। कुछ महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियां के सेवन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। यहाँ तक बहनों, नशीले पदार्थ धूम्रपान करने से रक्तवाहिकाओं और को नुकसान पहुँचाता है और ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ा देता है। बहनों, उच्च रक्तचाप की समस्या ज़्यादातर आधुनिक जीवन शैली के में काम का दबाव और तनाव लेने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। तो बहनों, अगर आप में किसी तरह के लक्षण दिखाई देने दे रही है, तो आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर इसका चेकअप जरूर करवाएं। साथ ही पारिवारिक चिकित्सक जो भी हैं आपके, उनसे संपर्क जरूर करें। बहनों, इसे बचने के लिए, इसके बचाव के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं।

हैं, बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें खान पान के मामले में लापरवाही होने की वजह से जो हो रही है उसे ध्यान देना होगा। खान पान का समय हमें निर्धारित करना होगा और समय पर खान पान करना होगा। उच्च रक्तचाप की समस्या, अगर इस तरह से हम घबराएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जानकारी रखने की ज़रूरत है। साथ ही पहले से तैयार रहने की भी ज़रूरत है। रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाएं, कम नमक वाला सेवन करें, प्रोसेस्ड डिब्बा और फास्ट फूड जंक फूड्स खाने से बचें, अपने भोजन में ताजे फल हरी सब्जियां, ओट्स साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पादक जरूर शामिल करें, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ खाएं जैसे केला नारियल पानी पिएं, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें, नियमित व्यायाम भी करें। कम से कम आप कोशिश करें 30 मिनट, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आंगन में चले, घर की सीढ़ी चले,

सब्जियां, ओट्स, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पादक जरूर शामिल करें। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे केला, नारियल पानी पिए, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें, नियमित व्यायाम भी करें। कम से कम आप कोशिश करें 30 मिनट, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आंगन में चले, घर की सीढ़ी चले या आप तैराकी भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहिएगा तो व्यायाम घर में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सुबह चले, शाम चले, ये भी एक व्यायाम का ही हिस्सा है। इससे भी हमारा वजन जो है नियंत्रण रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलती रहती है, जिससे हमें कई प्रकार की समस्या होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। बहनों, साथ ही वजन नियंत्रण भी रखें। वजन ज़्यादा होता है तो उसे कम करने की कोशिश करें। धूम्रपान या नशीले पदार्थ से आप बचें। तनाव चिंता कम करें। नींद समय पर लें, पूरी तरह लें, समय पर नाश्ता और खाना खाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। बहनों, वैसे तो हर समय हमें पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी काफ़ी बढ़ गया है तो हमें पानी का बोतल जब भी घर से बाहर निकले तो लेके निकलना चाहिए और समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। बहनों, इस तरह से अगर आप अपने सेहत पर ध्यान देते हैं तो आपको कई गंभीर बीमारियों से आपका बचाव होगा, साथ ही आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। बहनों, अगर आपको लगातार कमजोरी, आलस, चक्कर, सीने में दर्द, हाथ पैर में सूजन जैसी लगातार समस्या हो रही है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बहनों, आप साल भर में कम से कम 2 बार स्वास्थ्य की जांच अवश्य करवाएं। 40 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का जोखिम तेजी से बढ़ता है। ब्लड प्रेशर के अलावा महिलाओं को लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, इस प्रकार के चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। समय समय पर आप अपने नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा में जाकर, सरकारी अस्पताल में जाकर अपना जांच अवश्य करवाएं। बहनों, हर साल 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है उच्च रक्तचाप मिलकर करें नियंत्रण, एवं अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच जरूर करवाएँ। बहनों, हमारा जीवन अनमोल है, इसमें लापरवाही न बरते। अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल हम खुद ही बना सकते हैं। बस थोड़ा सा सजग रहकर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरते और समय समय पर चेकअप करवाएं। और खान पान, बार बार मैं कह रही हूँ, खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही न करें। सुबह का नाश्ता, रात का खाना जरूर खाएँ। इसी प्रकार अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहनों, इन्हीं बातों पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं पहले ये गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बहनों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम नारी संसार में। बहनों वट सावित्री का आज पूजन है और लगभग सभी महिलाएं व्रत जरूर रखी होंगी, लेकिन व्रत रखने के साथ ही आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान रखना जरूरी है। बहनों उपवास जब भी तोड़े तो आप अपने उपवास तोड़ते समय अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। जब भी उपवास तोड़े तो आप हल्का पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन खाएं, धीरे धीरे खाएं और खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं। एकाएक ज़्यादा खाना न खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। बहनों कोशिश करें व्रत जब भी तोड़े तो नारियल पानी, चाहे नींबू पानी, चाहे फलों का रस, इस प्रकार का जरूर हल्का आप

सूप ले सकते हैं। और इस तरह से अगर आप व्रत तोड़ते हैं तो आपको स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपका जो है पाचन सिस्टम धीरे धीरे वो नियंत्रण होगा। बहनों, आप इस तरह से अपना उपवास तोड़ें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी इसी कामना के साथ आज व्रत रखे हैं तो आपकी सारी कामना पूर्ण हो। इन्हीं बातों के साथ आइए कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार और आप बातें कर रहे थे आपके रेडियो सखी प्रेरणा से। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर

0: प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें, साथ ही साथ आपको साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी देंगे। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे हमारा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर के 2:15 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार और दोपहर के 2:30 पर आप फिर से आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। आज चर्चा का विषय होगा स्वस्थ जीवन शैली और युवा। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम गाम घर का प्रसारण किया जाएगा। आज चर्चा का विषय होगा मिथिलांचल के पर्यटन स्थल। शाम 7 बजे हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा। चर्चा का विषय होगा अन्न का भंडारण और चूहा एवं चूहा नियंत्रण कैसे किया जाए।

रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चित्र भारती, और हमारे दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि के 10:00।

तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज कार्यक्रम, आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको एक साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में सूचना दे दें। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। कार्यक्रम के दौरान प्रसारण से जुड़ने के लिए फोन नंबर है

8 4 3 00 2 9 3 5 3 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0627 2 2 2 4 8 1। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, अब आपको इंतजार होगा फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आइए लेते हैं आनंद कार्यक्रम आपकी पसंद का।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आपके रेडियो दोस्त रेडियो हमसफर चंदना फिर से हाजिर हो गई हूँ हर शनिवार की तरह ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं इस सुरीले सफ़र पर, पहले इस प्यारे से सुरीले से गीत के साथ। और ये गीत सुनना चाह रहे हैं शुभंकरपुर दरभंगा बिहार से मिट्ठू जी, रंजना, राजेश जी, चंचल, शालू, साक्षी, अनिकेत, अनमोल बाबू, मिष्टी और मौली इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं। झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरिराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी यही गीत सुनना चाह रहे हैं। रेंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीरा करी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी इसी गीत को सुनना पसंद किया है। भगवतीपुर बाजार से श्री विनोद राम, श्रीमती शीतली देवी, राहुल कुमार राम, श्री अशोक राम महिला संघ नाहर भगवतीपुर से श्रीमती रीना देवी, श्रीमती शोभा रानी, श्री शंभू, संतोष राम, अमित, अजित और अमृता श्री, साथ ही साथ नाज मंसिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, अरहान बाबू, हुमेरा नाज, अहिबा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चों शेख और चीना शेख, कोकिलवाड़ा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुसरत जहां नाज, मोहम्मद अमजद शेख और ये गीत है फिल्म सैनिक से लिया गया, कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं आपकी ये पसंद।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे कोटवा नारायण बाबा पट्टी पलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय बेड़ी से राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री डोमने वैष्णवी डोमने चंचल डोमने अर्जुन गविनकर और धीरज सर्व करे साथ ही साथ टावर चौक आशापुर से प्रारीलाल मनोहर अभिलाल मनोहर दुलारी लाल मनोहर सुंदर लाल मनोहर और प्रेम लाल मनोहर ये सभी सुनना चाह रहे थे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लिए गए इस गीत को लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज़ में आइए सुनते हैं वो गीत जो अभी हम अधूरा सुन पाए थे।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोनों फिल्म जान से अलका याग्निक और रूप नारायण की आवाज में, और ये गीत सुनना पसंद कर रहे थे गोकुल चौहान कंजला सहरसा से, राधे कुमार विद्यार्थी सविता दादी विद्यार्थी राकेश राजन विद्यार्थी राजीव रंजन विद्यार्थी ओम कुमार मुकेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी बुल्की वाली परमाचार नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन पप्पू जी रजनीश कुमार आनंद कुमार आशुतोष कुमार।

बाल महारिस्टर से सरगुन धारे, वाल्मीकि धारे, निधारी धारे, स्वप्न धारे और अजय खेलकर, साथ ही साथ शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव, साथ ही साथ लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लकी हर्षित और सुमित्रा साहू। लेते हैं एक छोटा सा

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद आइए फिर से

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद आइए फिर से सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गीत है फिल्म लोफर से लता मंगेशकर की आशा भोसले की आवाज में, और इस गीत को सुना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत बैठना बलकरण से बलकरण अंजनी वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौटदा सारागांव से सुजान वर्मा, सौहार्द वर्मा, आयुषी कृति वर्मा, बोड़खेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुनत, चेतना चेतन नहट्टा, दिलीप सिंह पावा, दीक्षा कुश मुनत। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं कुछ स्थान सलमगढ़ से मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, इरफान आजाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, सना अफरीन, साजिया नूर, आरिश बाबू, समा परवीन, शाहिन परवीन, नेमत परवीन, रौनक परवीन और सुमिता फातिमा तथा खुशी। डोंगरगांव जिला राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भैये, राधिका गज भैये, बेबी अंशिका और तन्मय गज भैये। इसी गीत को सुनना पसंद किया है ग्राम पेंजनिया जिला जिलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसौलिया। साथ ही साथ छत्रपति शामाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजेश राजदीप राजेश पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर। बिहार कॉलोनी महासुदन से वली अल्लाह फकीर, डब्लू अल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी, फर्जी अली अंसारी। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म लोफर से आशा भोसले की आवाज़ में।

0: अगला गीत जो आया है वो है नूर महल महसौल सीतामढ़ी से, नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नूरजत जहानाज, साजिया शाहीनाज, नाजिया नूरीनाज, कोताहा बिहार से नरगिज जफर, छत्तीसगढ़ भाटापारा देतरंगी से द्वाकर प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञानवेंद्र वर्मा, महादेव घाट अम्बेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति ठाकुर, रियांश और प्रिया ठाकुर, कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार नवेदा गाजीपुर से प्रतीक कुमार राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर विरक, जैतक विरक और मिका विरक, साथ ही साथ आप विनय रंजन बेला, नेहा रंजन, विनय रंजन, बेला गार्डन, वार्ड नंबर 3, दरभंगा बिहार से। और इसी गीत को सुनना
1: पसंद करते हैं। शहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
2: लाले क्या बताऊं यार, मुझे जमीन पे पैर रखती है वो, जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

तो श्रोताओं, ये सफर का ये आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल से आशा भोसले और बप्पी लहरी की आवाज़ में। तो इसी तरह से हमें अपने पत्रों के माध्यम से अपने पसंदीदा गीतों को लिखते रहें और मैं आपको हर शनिवार को इसी कार्यक्रम के दौरान आपके पसंदीदा गीतों को सुनवाने की कोशिश करूँगी। पता तो आपको याद ही होगा, फिर भी एक बार फिर से नोट करें। पता है हमारा कार्यक्रम

0: आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार। हमारा पिन कोड है 846004। हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में 2 सीमेंट इकाइयां लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की 2 बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें ना कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई ने जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान ज्ञात आय से 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी अभी जारी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए यह बात कही है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़ कर सहयोग की अपील भी की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना कर रही हैं। रोहतास

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार 20 से 25 मई के बीच सासाराम के फजलगंज स्थित डायट सभागार में काउंसिलिंग की प्रक्रिया होगी। अररिया समेत राज्य के विभिन्न अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों और कैंप विद्यालयों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रोहतास नगर के सासाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास ड्यूटी के दौरान एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से यातायात सिपाही मुकेश कुमार घायल हो गए। डेयरी पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने आज अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण का दौरा किया। इस दौरान उत्साहित लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: ڈائٹ کانفرنس ہال میں کاؤنسلنگ کا عمل ہوگا. ارریہ سمیت ریاست کے مختلف اقلیتی رہائشی اسکولوں اور کیمپ اسکولوں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواست کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے. خواہش مند امیدوار اب 30 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں. روہتاس نگر کے سہسرام تھانہ علاقے کے تحت ایس پی جین کالج موڑ کے قریب ڈیوٹی کے دوران ایک ٹریکٹر کی زد میں آنے سے ٹریفک سپاہی مکیش کمار زخمی ہو گئے. ڈیری مویشی پروری اور ماہی وسائل کے وزیر نند کشور رام نے آج اپنے آبائی ضلع مغربی چمپارن کا دورہ کیا. اس دوران پرجوش لوگوں نے جگہ جگہ ان کا والہانہ استقبال کیا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ریڈیم ویو 231.5 میٹر یعنی 1296 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے. آئیے اب سنتے ہیں روزگار سوچنا. بھارتیہ سینا میں سیویلین سوئچ بورڈ آپریٹر گریڈ 2 CSCO کے پد پر کے لیے ای میل کے ذریعے آویدن مانگے گئے ہیں. کل پد ہیں 190. انتم تیتھی ہے 31 مئی 2026. आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर विस्तृत जानकारी लें. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी की गई है. कुल पद हैं 1230. अंतिम तिथि है 31 मई 2026. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आयोग की वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in. दक्षिण पूर्व मध्य रेल रायपुर से ऑपरेस्ट की रिक्तियां हैं. इसके तहत वेल्डर, फिटर और मशीनिस्ट समेत अन्य ट्रेड की भर्तियां होंगी. कुल पद हैं 1644. अंतिम तिथि 4 जून 2026. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन इस वेबसाइट sector.indianrailway.gov.in पर जाएं. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल में हॉस्पिटल असिस्टेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं. कुल पद हैं 1200. अंतिम तिथि है 21 मई 2026. आवेदन प्रक्रिया संबंधित वेबसाइट esb.mp.gov.in पर लॉगिन करें. कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनी के पद के रिक्तियां हैं. इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कुल पद हैं 660. अंतिम तिथि 11 जून 2026. आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट coalindia.in. उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे. कुल पद हैं 107. अंतिम तिथि 27 मई 2026. आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट है upessc.up.gov.in. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव समेत अन्य पदों पर मौके हैं. कुल पद हैं 250. अंतिम तिथि 24 मई 2026. आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट है bharatpetroleum.in. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑपरेटरिस्ट की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. कुल पद है 1865. अंतिम तिथि है 19 मई 2026. आवेदन प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट है unionbankofindia.bank.in. महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे. कुल पद हैं 500. अंतिम तिथि है 28 मई 2026. आवेदन प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन है. वेबसाइट है mahanandacoalindia.in. आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट में अपने स्तर से जानकारी प्राप्त जरूर कर लें. तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार बस कुछ ही देर में. लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना. श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट

0: किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर है 9430029353 और हमारा लैंड।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दो हजार 25 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल

0: मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई

0: कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

फिल्म राजकुमार का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए, अब समय हो रहा है हमारे प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम का, तो सुनते हैं गुजराती गीत सुरेश रावल की आवाज़ में।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म के गीत दिलवाले, बाजीगर रामलखन और कच्चे धागे, और आवाजें थी अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार शानू, लता मंगेशकर।

मीडियम वेव 231.5 मीटर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम, गुजराती गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश रावल की आवाज में। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।

0: क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वह लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
1: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
2: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
3: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
1: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
3: लताएं भी रूठती हैं क्या?
1: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
2: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
1: क्या समझी है तू?
2: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
1: वो कैसे?
2: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
1: अरे अनुसुईया, ओह सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
2: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
1: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
2: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
1: धत।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
1: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
2: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
1: परिहास ना कर।
2: अच्छा नहीं करती, बता।
1: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
2: तेरी तरह
1: फिर परिहास।
2: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
1: हाँ बता।
2: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
1: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
2: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
1: अच्छा,
2: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
3: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
1: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: ओह अरे ये भौरा कहां से आ गया?
1: अरे ओह अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओह अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
2: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
1: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
2: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
2: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजिए ना।
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
2: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
0: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
1: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
2: अब बैठ भी जा।
1: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
2: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
0: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्म

0: धर्माधिकारी हूं। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
0: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंपकर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
0: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
2: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
2: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है,
2: कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
0: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
0: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
0: फिर
2: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
0: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: क्या आर्य?
0: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
0: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
0: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
0: ये लीजिए
1: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?
0: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
0: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
0: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा।

0: चले चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
1: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला।
0: चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते

0: राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राज कार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र

0: बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा
0: है। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: है? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
6: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
6: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
6: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझाकर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
6: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
6: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
6: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
6: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
6: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: आह, क्या कह रही हो अंसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनुसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं? तुम बताओ तो, इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला?
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया मैंने।
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था।
1: हाँ हाँ।
2: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ हाँ।
2: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
1: हाँ।
2: तो आपके गले में नहीं आई।
1: हाँ।
2: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
1: हाँ।
2: ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं,
1: हाँ।
2: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं, तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठे।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ।
2: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका HMV में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो,
1: हाँ,
2: खर्च के जो सुर होते हैं,
1: हाँ,
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
1: हाँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: बट ये दोनों में फर्क था, संजी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं,
0: या
1: नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। देखिए, आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: हाँ। अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधु

0: मते करके डांसर थी।
1: अच्छा।
0: तो उनकी दोनों की जुगलबंदी, वो दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया।
1: अच्छा।
0: मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
1: अच्छा।
0: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
1: तो
0: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा। तो मेरा मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था संजय को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
1: अच्छा।
0: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
1: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
0: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
1: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
0: नैयर साहब का,
1: क्या बात क्या बात।
0: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत।
1: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का,
0: हाँ,
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा,
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ,
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
0: जी, जी, जी।
1: कोई कोई गाने इतने गुजराती में, गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ,
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा, कटआउट बनाया
1: था, कट आउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी,
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा,
1: ऐसा लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात, क्या
1: लेकिन
0: बात।
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया,
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ,
1: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ, ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा
0: अच्छा।
1: के नहीं आती बात
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार ये गाने चाहिए
0: अच्छा,
1: तो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लगता है, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था,

0: मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे।
1: पसंद आता
0: पहला पमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछते थे
1: जी
0: फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: और रफी साहब का गाना एक दुगाना है,
1: हाँ हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।
1: ओहो
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको।
1: हाँ हाँ
0: रफी साहब पहले शुरू करते थे
1: जी।

0: रहेगा, फिर जानी विस्की और परसो भी रहेगा और तरसो भी। नहीं क्या जॉनी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता
0: हाँ,
1: है, ये ठपका दोष आता है
0: जी, जी।
1: इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी
0: जी, जी, जी।
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा।
0: जी, जी।
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है,
0: क्या बात है,
1: दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो,
1: शालीनता हो
0: तो जरूर, सवाल ही नहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते थे,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के लिए,
1: कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए तो बहुत शो हुए।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आप ने किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा।
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचने गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास, तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो जैसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: पुराने
1: जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो उन्हें वैसा का वैसा

0: वो सुनना
1: वैसा के
0: चाहते
1: वैसा
0: हैं
1: अभी मैं
0: जी।
1: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो
0: हाँ
1: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना
0: जी
1: म्यूजिक
0: जी जी
1: चिपक के
0: जी
1: चलता था शब्दों को।
0: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी
0: उनकी नज़र से एक
1: हाँ,
0: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
1: मिलता
0: में,
1: नहीं है, सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
1: बजा करते
0: अपना
1: हैं।
0: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल,
0: हाँ
1: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से।
0: जी
1: इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
0: जी
1: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
0: जी
1: नहीं तो आज ये ढुलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको
0: हाँ
1: गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
0: सिंह
1: होता,
0: हाँ
1: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
0: हाँ
1: सालों साल तक।
0: जी
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
0: हाँ
1: बहुत सारे लोगों ने मुझे तो क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से,
0: हाँ
1: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से जो बदली हो जाएगा
0: जी जी
1: नाजी। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का,
0: जी
1: उसमें एक रिहर्सल
0: हाँ
1: और शो
0: जी
1: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
0: ओ
1: हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
0: क्या
1: बात,
0: बात
1: जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
0: हाँ
1: म्यूजिशियंस,
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: संजय मराठे करके है,
0: जी
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है, तो
0: अच्छा
1: ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन
0: हाँ
1: कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो ज़रूरत होती थी ना रिहर्सल,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो एक रिहर्सल और शो,
0: जी जी
1: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको,
0: जी
1: शो को।
0: जी आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
0: विनय मांडके
1: विनय मनके।
0: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि
1: और
0: बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज़ हम सुनते हैं,
1: जी,
0: तो
1: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ बहुत सारे
0: जी
1: जिंगल
0: जी
1: गाए
0: जी
1: उसने, और
0: अच्छा
1: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
0: हाँ
1: परफॉर्म होता है,
0: जी
1: वो था बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: मतलब ऐसे
0: हाँ हाँ
1: किसी को
0: हाँ
1: तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
0: जी
1: नॉट डैट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
0: अच्छा
1: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एकदाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ
1: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा गया।
0: बहुत अच्छे
1: फिर
0: सिंगर
1: एक गाना था अन्ना
0: जी
1: जी का,
0: हाँ हाँ
1: भोली सूरत दिल के खोटे,
0: हाँ
1: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, तो ये
0: हाँ
1: बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा
0: अच्छा
1: खोटी वाली, कुछ भी मतलब
0: अच्छा
1: वो ठीक था, लोगों को भी मजा
0: मस्ती के
1: आता
0: मूड
1: था,
0: में
1: मस्ती के
0: हमेशा
1: मूड
0: रहते थे वो।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं पड़वा के शो में, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी।
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते हैं कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, पर गायला उभं राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी
1: पाड़ाला
0: है,
1: पिकला
0: पाड़ाला पिकला
1: अम्बा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में
1: हाँ
0: शामिल होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत ही
0: था।
1: जरूरी था,
0: हाँ
1: मस्ट,
0: हाँ हाँ
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर
0: और
1: जरूर।
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को लेकर। आइए सबसे पहले सुने युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी के सभी युवा श्रोताओं को नमस्कार। अच्छे हैं, बिल्कुल दुरुस्त होंगे और गर्मी भी अच्छी अच्छी सी गर्मी आ गई है। अच्छी हम इसलिए कह रहे हैं कि दो तीन दिनों से जो तपिश है ना वो बढ़ गई है, और जो मौसम विश्लेषक हैं, जो मौसम पर नज़र रखते हैं मौसम विज्ञान केंद्रों में, उनका कहना है कि अगर गर्मी ढंग से ना पड़े गर्मी के मौसम में, तो ऋतु चक्र जो है ना वो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पाता है। कई बार गर्मी की शुरुआत में या गर्मी के दिनों में ज़ोरदार बारिश हो जाती है लगातार, और जब बारिश के महीने आते हैं ना सावन भादो के, तो हमारे किसान टकटकी लगाए रहते हैं ऊँचे आसमान में कि कब बादल छाए और बारिश हो और धान की रोपनी हम शुरू कर सकें, और उसमें बड़ी दिक्कत आती है।

कभी लगता है जैसे जाड़ा पड़ा ही नहीं, और जाते जाते जो जाड़ा पड़ता है ना तो समझिए कि हाड़ तक कपकपा देता है। तो ये जो मौसम की जो उठापटक है, मौसम के जो तेवर हैं, वो अपनी जगह। लेकिन हम युवाओं के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि अगर लोहा भी चबा ले तो पच जाए, ये लोग कहते हैं। और युवाओं के कंधे पर जो देश है ना, वो इसलिए भी हमारे कंधे मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। ये बातें मतलब लोहे के चने चबाने का मतलब ये होता है कि हम युवा अगर शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो समझिए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। मौसम व्यवस्थित हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि हम युवाओं में लापरवाही इस कदर होती है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम थोड़े जागरूक नहीं होते हैं। ये हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल जागरूक नहीं होते हैं, भाई जो जिम जाते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, या फिर जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योग और प्राणायाम से जुड़े हुए जो हमारे युवा मित्र हैं उन्हें तकलीफ पहुंचाना हमारा कार्य नहीं है। लेकिन ऐसे मित्र जो ये सब करते हैं उनकी नज़र में भी वो मित्र होंगे जो ऐसा कुछ करते नहीं हैं और लगभग कभी कभी अक्सर बीमार भी पड़ते रहते हैं। आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली से हम युवाओं को कितने फायदे होने वाले हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और इसका इम्पैक्ट यानी इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ हमारे शरीर हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता है दोस्तों, इसका प्रभाव हमारे अध्ययन पर, हमारी जो स्टडी है उस पर भी पड़ता है। और स्टडी अगर दुरुस्त है, बढ़िया है, तो समझिए कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकदम से तैयार हैं। और इस समय हम तैयार हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मीठा सा लोकगीत विभा सिन्हा के स्वर में सुनवाने के लिए। सुनते हैं।

तो बैक टू बैक ये दो गीत मैथिली में हम आपको सुनवा रहे थे। पहला गीत विभा सिन्हा के स्वर में आपने सुना और दूसरा गीत उर्मिला देवी के स्वर में। दोस्तों, पर्व त्यौहार का जो समय होता है वो समझिए तो हमारी जो परंपरा रही है उसमें हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल पर कोई ना कोई पर्व त्यौहार आते रहते हैं। आज अगर आप निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि बट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं जो है ना, अपने सुहाग की रक्षा और अपने पतियों के दीर्घ जीवन के लिए व्रत और त्यौहार और पूजा पाठ में लगी हुई मिली होंगी और एकदम से लाल लाल साड़ियां और सब सजी धजी फूल लेकर और जो अपना विध व्यवहार होता है ना पूजा पाठ का, हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से ये पूजा मनाए जाने की विधि रही है, परंपरा रही है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये संस्कार की बातें हैं और ये परंपरा से आई हुई चीज़ें हैं जिसका जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। परंपरा से आई हुई चीज़ एक और भी है जो हमारे पिताजी और पिताजी के जो पिताजी और उनके पिताजी जो उन्हें बताते रहे हैं वो यही बताते रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि सारी युक्ति सारी चीज़ें बेकार हैं। बेकार कहने का मतलब ये कि हम युवा हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम कोई कार्य कर रहे हैं और स्वस्थ नहीं है तो फिर हमारा जो कार्य है वो प्रभावित होता है, यानी हमारा जो आउटपुट है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। सिर्फ प्रभावित नहीं होता है, बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और अगर स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया, ये बातें हमारे पूर्वज कहते रहे हैं और इसका महत्व

हमर चुनरी ले ले आयब ननद जी के भैया। पारंपरिक गीत और संबंधों की जो मिठास है वो भी परिलक्षित होती है गीतों के माध्यम से, और ये परंपरा के गीत बड़े मीठे होते हैं, नोकझोंक वाले गीत भी होते हैं और बड़े सुमधुर होते हैं। भगवान से अगर विनती करनी हो तब भी जो लोकगीत गाने की जो परंपरा रही है वो भी अद्वितीय रही है, चाहे भाषा कोई हो, चाहे हम किसी इलाके में चले जाएं अपने देश में, तो आपको हर भाषा में हर परिस्थिति में जो लोक कंठों में बसे हुए गीत सुनने को मिलेंगे वो बड़े ही प्यारे और मनभावन। और भी गीत आपको हम सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। चर्चा थोड़ी सी हम कर रहे थे ना कि स्वास्थ्य को लेकर हम युवाओं में अगर चेतना रहे, हम थोड़े से लापरवाह न हो और जागरूक हो, तो फिर वैसे देखिए दोस्तों, मनमौजी जीवन शैली जो है ना, इसके लिए हम जाने जाते हैं। ये उम्र ही है ऐसी, लोग ऐसे भी बोलते बोला करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अक्सर नियमित दिनचर्या का पालन हम अगर नहीं करते हैं तो इसके दीर्घकालिक जो दुष्प्रभाव हैं वो होते हैं, और न सिर्फ शरीर बल्कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी इससे प्रभावित होता है। इस वजह से व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यों पर भी जो है प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। हमारा जो है अनुशासित जीवन जो है ना, वो अगर स्वस्थ जीवन शैली नहीं है तो फिर उस वजह से गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फायदेमंद है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं। अब जैसे हम पर्याप्त नींद की बात कर लें, अब देखिए भाई, हम तो ये सोचते हैं ना कि जब नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, अभी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लेते हैं, अभी इतने कार्य बाकी हैं तो कर लेते हैं। अब रात के 11 क्या बजे, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, हम फिर तब जाकर सोते हैं, देर सुबह तक, सुबह क्या दिन चढ़े तक हम सोए रह जाते हैं, और इस वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है अगर ये लगातार हो तो। कई बार क्या होता है कि पूरे साल दोस्तों हम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, और जैसे ही परीक्षा के दिन नज़दीक आते हैं ना, तो दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात एक करने का मतलब समझते हैं ना, एकदम रात तक, देर रात तक जगते हुए पढ़ते हैं, और जो प्रेशर होता है ना माइंड पर कि इतनी पढ़ाई करनी है, ये सब चैप्टर देख जाना है, गेस जो जो संभावित प्रश्न है उसे देखना है, और कहीं कोई अगर दिक्कत है समझने में तो फिर वो समय जो बीता हुआ है उसे वापस लाने की जुगत होती है कि कहाँ से उसको फिर ठीक किया जाए, तो ये ऊहापोह की स्थिति हो जाती है और इसमें नींद हमारी प्रभावित हो जाती है। तो सही बात तो ये है कि हमारे पास पर्याप्त नींद हो, खान पान बढ़िया हो भाई, इसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। और अमूमन फास्ट फूड की तरफ हम जाते हैं, बना बनाया खाना मिल गया या फिर ऑर्डर कर दिए, आ गया, पहुंच गया, खा लिए, और बस वो पेट भरने की बात होती है, स्वाद के मुताबिक वाली बात होती है। तो फिर आने वाले समय में, आजकल देखिए फैटी लीवर की बड़ी समस्या है दोस्तों, इस उम्र में, जिस उम्र में हमने कहा ना कि लोहा का चना भी हम चबा लें तो वो पच जाए, उस स्थिति वाली बातें तो बहुत पुरानी हो गई, मामूली खाना भी ढंग से पच जाए तो एक बड़ी बात है। और उसकी वजह क्या है कि कम से कम जितनी नींद हमें चाहिए वो हम नहीं लेंगे, और जो नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम है वो करें, थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा टहल लें, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और कम से कम नींद तो ज़रूर आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब समय कैसे, समय प्रबंधन बहुत बड़ी चीज़ है, समय का प्रबंधन करना अपनी अपने पाठ्यक्रम के साथ, कॉलेज का समय हो या फिर कोचिंग का समय हो, उसके मुताबिक समय निकालें।

समय निकालें भाई सुबह जगने के लिए, समय निकालें थोड़े एक्सरसाइज के लिए, समय निकालें ठीक ढंग से खाना पीना के लिए, समय निकालें व्यायाम करने के लिए, समय निकालें योग और प्राणायाम के लिए, तो फिर पढ़ाई के लिए भी समय निकाला, फिर खाना ये भी तो है। कई हम में से कई लोग जो हैं वो खुद से भी खाना बनाते हैं, तो उनके पास एक समस्या होती है कि उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। देखिए भाई, बात कुछ भी हो, एक ही बात है कि हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए किन सब चीज़ों से दूर रहना होगा हमें, हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। एक चीज़ जो है उस पर ख्याल रखना है, वो है नशीले पदार्थ से दूर रहना है। लेकिन कार्यक्रम में एक गीत तो अभी सुनना ही सुनना है। श्याम मोहन मिश्र का ये स्वर है।

तो दोस्तों आज इस युवाणी कार्यक्रम के अंतिम चरण में कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे। अच्छा लगा होगा आपको ये गीत। और अच्छी सी बात यह है कि हमने कहा था कि अगर स्वस्थ जीवन शैली चाहिए तो नशा किसी भी स्तर का हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे कुछ भी हो, आप नशा से बचिए। और हमेशा जो अपने जीवन को जो है ना वो थोड़ा सा एकदम नकारात्मक सोच से अलग रखकर सकारात्मक सोच की तरफ चलिए तो फायदा होगा। लगे हाथ एक कार्यक्रम संबंधी सूचना हम आपको पहुंचा देते हैं। इस बार हेलो जिंदगी का विषय है उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां। और ये कार्यक्रम हेलो जिंदगी कल प्रसारित किया जाएगा दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर होंगे 9430029353। दूसरा नंबर होगा 0627222481। 0627222481। समय याद रखें कल रविवार को दिन में 11 बजे। तो श्रोताओं, इसी सूचना के साथ आज की युवाणी से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।

युववाणी, ये था हमारे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम का पहला गीत है सुखवीर का गाया हुआ। कुमार के बोल हैं, सुखवीर का ही संगीत है। फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान।

किसी का भाई किसी की जान, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, थोड़ा सा सुधार कर लें, कमाल खान और पलक मुच्छल की ये आवाज़ें थी, शब्बीर अहमद के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत था। आइए सुने फिल्म संगीत का ये अगला गीत फिल्म कनेक्ट से, बिन्नी दयाल और हनिया नफीसा की आवाज़ें हैं।

और अब लीजिए फिल्म फराज का ये गीत सुनिए, जिसे गाया है विद्य गोपाल ने। गीत और संगीत समीर राहत का है।

0: अरिजीत सिंह के गाए फिल्म एनिमल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच

0: द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए हम आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से आज इस सभा में और कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर नजर डालें। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। शाम 6:30 का समय होगा कार्यक्रम गाम घर का। मिथिलांचल के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी की बातें इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। 7 का समय खेती गृहस्थी का होगा। अन्न का भंडारण एवं चूहों का नियंत्रण इस विषय पर जानकारी की बातें बताई जाएंगी। साथ ही एक प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे उड़ान। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। सुनिएगा विज्ञान कार्यक्रम आज शाम 8:15 पर। इसके अंतर्गत डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र की वार्ता होगी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष। इस कार्यक्रम के लिए निर्माण एवं वाचन स्वर कल्याण कुमार झा का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे असद दाऊद। विज्ञान कार्यक्रम आज शाम 8:15।

फिल्म पत्रिका चित्र भारती। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 9:30 पर और रात 10 बजे दिल्ली से ही हम रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे हमारे केंद्र से आज इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में विवरण। और अब एक नजर कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर डालते हैं।

कल की पहली सभा में सुबह 5:55 पर कृषि चर्चा में जानकारी प्राप्त कीजिएगा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आलेख और वाचन स्वर अनिल कुमार कर्ण का होगा। सुबह 6:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे दुर्घटना में घायल होने पर क्या करें, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनिएगा कल प्रातः 7:05 पर नमस्कार मिथिला। अंजुमन ये उर्दू कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे कल सुबह 9:10 पर। कल सुबह 10 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे फुलवारी कल सुबह 10:30 पर। सूत्रधार होंगी रजनी कुमारी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी असद दाऊद की। श्रोताओं कल दिन में 11 बजे हेलो जिंदगी में विषय होगा उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। सूत्रधार संजय कुमार, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा। सखी बहिन ये कार्यक्रम कल मध्याह्न 12 बजे हमारी बहनें सुनेंगी। सूत्रधार होंगी माला झा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे असद दाऊद। कल दोपहर 12:30 पर सुनिएगा मैथिली नाटक नवीना। आपके अनुरोध पर पत्रों पर आधारित ये फरमाइशी कार्यक्रम कल दिन में 1:15 पर हमारे श्रोता सुन पाएंगे। कल दिन में 3 बजे विद्यापति गीत आप सुनेंगे। शाम 5 बजे का समय होगा गजलों और गैर फिल्मी गीतों का। कल शाम 5:40 पर आप फिल्मों से लिए गए कुछ गजल और गीत सुनेंगे। कल शाम 6:30 पर गांव घर में अंक होगा गुनगुनाई मन, चर्चा होगी विश्व रक्तचाप दिवस पर। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी और पत्र आधारित लोकगीत भी हमारे श्रोता सुनेंगे। साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम होगा ममता का आंचल। खेती गृहस्थी में कल शाम 7 बजे सूत्र कृमि पर नियंत्रण कैसे करें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से हम कल रात 9:30 पर रिले करेंगे और रात 10 बजे दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज इस सभा में, साथ ही कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विद्यापति गीत। इस कार्यक्रम में महाकवि विद्यापति की ये रचना सुनिए पंडित सियाराम तिवारी के स्वर में।

ये स्वर था काशीनाथ झा किरण का। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं महाकवि विद्यापति की ये रचना गौतम मिश्र के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मैथिली संवाद के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के कड़गर चेतावनी दैत कहलनि जे ओहि के आतंकवादी सब के संरक्षण देव आ भारतक विरुद्ध गतिविधि चलायब बंद करबाक हैत। श्री द्विवेदी नव दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवादक विरुद्ध भारतक सख्त नीति के सोझा रखैत ई बात कहलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे मुजफ्फरपुर आ किशनगंज जिला में 2 सीमेंट इकाई लगाओल जयबाक स्वीकृति देल गेल अछि। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट में ई जनतब दैत कहलनि जे बिहार में औद्योगिक निवेशक नव अध्याय शुरू भऽ गेल अछि। ओ जनौलनि जे राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB के 67वीं बैसक में सीमेंटक 2 पैघ फैक्ट्री स्थापित कयल जयबाकें मंजूरी देल गेल अछि। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहलनि जे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्वक सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य सभ के गंभीरता सँ आगाँ बढ़ा रहल छथि। शेखपुरा में संवाददाता सब के संबोधित करैत श्री कुमार कहलनि जे राज्य सरकार आम जनताक अपेक्षा पूरा करबाक लेल मौन सँ काज कऽ रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे राज्य में विशेष अभियान चला कऽ भूमि सर्वेक लंबित काज सभक निष्पादन कयल जायत। पटना में राजस्व आ भूमि सुधार विभागक कार्यक समीक्षा बैसकक दरमियान श्री चौधरी अधिकारी सभ के भूमि परिमार्जन आ सर्वेक काज समय सीमाक भीतर शीघ्रता सँ पूरा करबाक निर्देश देलनि अछि। बैसकक बाद विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल पत्रकार सभ सँ गपशप करैत कहलनि जे भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है।

0: राज्य मुख्यमंत्री के निर्देशक अनुसार आवश्यकता पड़वा पर सर्वेक काज में अतिरिक्त अधिकारी आ कर्मचारी सभक तैनाती कैल जायत। राष्ट्रीय लोक मोर्चाक अध्यक्ष आ राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर युद्ध जनित स्थिति सब के लऽ कऽ राजनीति करबाक आरोप लगौलनि अछि। पटना में संवाददाता सब सँ गपशप करैत श्री कुशवाहा कहलनि जे दुनिया भरि में घटनाक्रमक कारणे तेलक दाम बढ़ि रहल अछि। ओ कहलनि जे एहि मे सरकारक कोनो भूमिका नहि अछि। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई नीट यूजी पेपर लीक मामला में पुणे में कार्यरत जंतु विज्ञान विषय के प्राध्यापक मनीष गुरुनाथ मंधारी के दिल्ली सँ गिरफ्तार कैलक अछि। सीबीआई देशभर में 6 स्थान पर तलाशी अभियान चलाकर आपत्तिजनक दस्तावेज लैपटॉप मोबाइल फोन आ बैंक पासबुक सेहो जब्त कैलक अछि। एम्हर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए काल्हि घोषणा कैलक जे नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून कऽ आयोजित कैल जायत। आर्थिक अपराध इकाई जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभागक कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना आ जमुई स्थित विभिन्न ठेकान सब पर छापेमारी कैलक अछि। ई छापेमारी आय सँ बेसी संपत्तिक मामला में कैल गेल अछि। जनतबक अनुसार तलाशीक दरमियान ज्ञात आय सँ 2 करोड़ सँ बेसीक संपत्तिक खुलासा भेल अछि। मिथिलांचल सहित प्रदेश भर में आई बरसाइत पावनि पारंपरिक श्रद्धा ओ उल्लासक संग मनाओल गेल अछि। आजुक दिन महिला लोकनि अपन पतिक दीर्घ आयु आ उत्तम स्वास्थ्यक लेल वरक गाछ के पूजा करैत छथि आ सत्यवान सावित्रीक कथा सुनैत छथि। मिथिलांचल में नव विवाहिताक लेल बरसाइतक पावनि आई विशेष पूजा अर्चना अत्यंत विधि विधान पूर्वक होइत अछि। मौसम विभाग आई पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद सहित प्रदेशक उत्तर पश्चिम आ दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकतर स्थान पर मेघ गर्जन, वज्रपात आ वर्षाक आशंका जतौलक अछि। एहि दरमियान 50 सँ 60 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ अन्हर बिहाड़ि अयबाक संभावना अछि। अररिया सहित राज्यक विभिन्न अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय आ कैंप विद्यालय सभ मे नामांकनक लेल ऑनलाइन आवेदनक तिथि 30 मई धरि बढ़ा देल गेल अछि। किशनगंज जिलाक पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार गरवनडंगा थाना में पदस्थापित दारोगा के निलंबित कऽ देलनि अछि। मधुबनी जिलाक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनिया टोला सँ पुलिस एक महिला के गांजाक संग गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है हमारा ग्रामीण प्रसारण। आइए सुने कार्यक्रम गांव घर।

आजुक गाम घरक दलान पर सबटा श्रोता लोकन के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आई शनि दिन आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुने छी कार्यक्रम झरोखा। सबसे पहिने त कह दी श्रोता लोकन जे आजुक जे झरोखा कार्यक्रम है एकर मुख्य आकर्षण की है तो सबसे पहिने मिथिलांचल के जे प्रमुख पर्यटन स्थल है संबंध में गप करब। एकर बाद हर एक व्यक्ति हर एक लोक स्वस्थ रह चाहे जाहि में स्वच्छता के बेस महत्व है तो एहन विषय से संबंधित एकटा भेंट वार्ता सुनब। गीतनादक आनंद लेब। कलाकार

0: आवश्यक अछि। कहलो गेल अछि जे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनक वास होइत अछि। तो चलू आइ हमसब एहने विषय सँ संबंधित एकटा भेंट वार्ता सुनै छी। स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ। भेंट वार्ताकार छथि अमित कुमार दास, हिनका संग गप कऽ रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भऽ रहल अछि से हमहूँ सब ध्यान सँ सुनी।
1: श्रोता लोकनि, गाम घरक दलान पर अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। कार्यक्रम में एकटा युवा कर्मठ आ मेहनती अतिथि उपस्थित छथि, ओ छथि अमित कुमार दास। अपने शिक्षक छी आ शिक्षण काज में लागल छी। अपने के कार्यक्रम में स्वागत, संगे अपने के नमस्कार। आई हम सब गप करब जे स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ। तो अमित कुमार दास जी, हम अपने से जानना चाहब जे स्वच्छता शब्द से की तात्पर्य अछि, एहि संबंध में विस्तार से कहल जाए।
2: धन्यवाद अनिल कुमार करण जी, अहाँ हमरा एहि कार्यक्रम में दू शब्द बाजे के अवसर देलहुँ, ताहि हेतु अपने के हृदय से आभार व्यक्त करै छी। और खास कर स्वच्छता जे अछि तकर संबंध स्वास्थ्य से अछि, चूँकि अगर केओ भी व्यक्ति स्वस्थ रह चाहे छै, अगर स्वस्थ रहता तखने हुनका धन वैभव सुख शांति समृद्धि एहि चीज के कामना होइ। अस्वस्थ व्यक्ति कखनो कोनो चीज के सही ढंग से निर्णय नहीं लऽ सकै छथि, चूँकि कहल गेल अछि जे एकटा स्वस्थ भिखारी एकटा अस्वस्थ राजा से ज्यादा धनवान होइत छथि। ताहि दुआरे हम निवेदन करब सब व्यक्ति सँ, सबसे पहले अपन शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता और व्यक्तिगत रूप सँ जे हम सब अभिव्यक्ति करै छी, बाजै छी, तहू में स्वच्छ भाषा के उपयोग करी, ई बहुत ही नीक हैत। शारीरिक स्वच्छता सँ संबंध अछि शरीरक स्वच्छता। तो हर व्यक्ति सबसे पहले तो स्वस्थ तखने रहब जखन हम अपन शरीर के स्वस्थ राखब। स्वस्थ तखन रहब जखन अपन सही ढंग से अपन क्रियाकलाप सही ढंग से शरीर के स्वच्छ राखब, प्रतिदिन स्नान करब, नाखून के काटब, दांत साफ करब, या जहि तरह से अपना आप के स्वस्थ राख सके छी, अगर हम प्रतिदिन अपना आप के स्वस्थ राखब तो हमर शरीर स्वस्थ रहत। अगर हमर शरीर स्वस्थ रहत तो हमर मन प्रसन्न रहत, और जखन मन प्रसन्न रहत तखन हम सही ढंग से कोनो चीज के निर्णय लऽ सकै छी।
1: देखियो, एहन कहल जाइ छै जे स्वच्छता में भगवानक वास होइए, आ जतय भगवान विराजमान रहै छै तऽ सब काज अनेरे नीक जकाँ होवय लगैए। संगे स्वच्छता बड्ड बेसी आवश्यक अछि। स्वच्छता सँ हमर शरीर स्वस्थ रहैए। कोनो व्यक्ति अस्वस्थ आ रोगी नहि रहऽ चाहै छै तऽ स्वच्छता के अपना कऽ हम स्वस्थ रहि सकै छी, मुदा बेसी लोग ई काज के करै छै, मुदा किछु व्यक्ति एखनो एहिसँ दूर छै, तऽ हुनका लेल की कहऽ चाहबै?
2: सरकार के एकटा महत्वपूर्ण योजना अछि जे अहाँके 2 अक्टूबर 2014 के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित भेल, महात्मा गांधी के 145वीं जयंती के शुभ अवसर पर ई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जे छे से दिल्ली के राजघाट से संचालित भेल। ई तो सरकार के द्वारा भेल, लेकिन जावत तक जन जन में एहि चीज के जागरूकता नहीं हेतै, सबसे पहले तो हम अपना घर आंगन अगल बगल साफ राखी, और तत्पश्चात हमर जे पड़ोसी छथि, हमर जे समाज छथि, हुनको एक प्रति हम प्रेरित करिए जे अहाँ स्वच्छ राखू, अगल बगल के साफ राखू। चूँकि जा तक कूड़ा के प्रबंधन नहीं हैत, कचरा के प्रबंधन सही ढंग से नहीं हैत, ता तक जे छै से हम अगर अपन घर में स्वच्छ रहब और अगल बगल गंदगी में रहत तो ओइसे हमर स्वयं प्रभावित भ सकै छी। हम देखै छी अक्सर या तो मेला ठेला या दुकान दौरे बाट हाट में देखै छी जे जतेक खाइ पीबे के जे सामान अछि से ओहिना उघारे रहैत अछि, जे पर जे छै कई तरह के रोगक कीटाणु बैसैत अछि, और वएह हम सब खाइ छी और जे छै से हम रोग के शिकार भ जाइ छी।
1: खूब सुंदर नीक गप अपने कह रहल छी। कोनो काज जे आरंभ होइए ना, घरे से आरंभ होइए, अपन विचार में स्वच्छता, व्यवहार में स्वच्छता, एहि काज के खास कऽ जे युवा वर्ग लोक सब छथि ओ एहि काज में कोना सहयोग कऽ सकै छथि, किए युवा वर्ग के लोक सब में प्रकृतिक दिस सँ बेसी ऊर्जा प्रदान कयल जाइए,

खूब सुंदर। एखन जो हम सब गीत सुन रहा छो, गीतक कलाकार बेदोषी शारदा सिन्हा। श्रोता लोकन सब गोटे निरोग रह चाहे छी, स्वस्थ रहक चाहिए, मुदा स्वस्थ रहबाक लेल जे किछ खास गप अइ ओहि पर ध्यान देव

0: एहि सम्बन्धमे अहाँ की कहऽ चाहब?
1: हम युवा साथीसँ ई आग्रह करबनि जे चूँकि अहाँमे ज्यादा ऊर्जा अछि आओर ऊर्जावान छी, तैँ हेतु अपने तऽ पहिले स्वस्थ रही, अपने घरके स्वास्थ्यके अनुकूल बनाबी, सङ्गहि सङ्ग जतेक मित्र मण्डली छथि हुनका एकटा ग्रुप बना लिअ, एकटा मेम्बर चीफ ऑफिसर लऽ लिअ आओर हर वार्डमे हर मोहल्लामे जाके हर लोकसँ भेंट कऽ कऽ स्वास्थ्यके प्रति आओर स्वच्छताके प्रति जागरूक करू। आओर अगर हर व्यक्ति जागरूक भऽ जायब तऽ हमरा दृष्टिकोणसँ जे छै से रोग मुक्त भऽ सकै छै आओर हर परिवार जे छै अगर स्वच्छताके अपना लै छै, सङ्गहि सङ्ग ओ जतेक हमर कर्मठ सहयोगी युवा छथि हुनकासँ आग्रह जे हर घरसँ हर व्यक्तिसँ समन्वय स्थापित कऽ कऽ हुनका एहि तरफ जे छै से अपन विचारसँ अवगत कराबैत जे स्वच्छतासँ की अभिप्राय छै, किया हम स्वच्छ रहऽ चाहै छी। चूँकि स्वच्छता जाबत नहि रहतै, जाबत केओ व्यक्ति स्वच्छ नहि रहता तऽ हुनकर जे छै से मनःस्थिति जे छै से ठीक नहि रहतनि आओर मनःस्थिति ठीक नहि रहतनि तऽ घरमे विभिन्न प्रकारके रोग उत्पन्न

0: समन्वय स्थापित कऽ कऽ हुनका एहि तरफ जे छै से अपन विचारसँ अवगत कराबैत जे स्वच्छतासँ की अभिप्राय छै, किया हम स्वच्छ रहऽ चाहै छी। चूँकि स्वच्छता जाबत नहि रहतै, जाबत केओ व्यक्ति स्वच्छ नहि रहता तऽ हुनकर जे छै से मनःस्थिति जे छै से ठीक नहि रहतनि, आओर मनःस्थिति ठीक नहि रहतनि तऽ घरमे विभिन्न प्रकारके रोग उत्पन्न हेतनि, शारीरिक आओर मानसिक कष्ट हेतनि। ताहि हेतु सब युवासँ आग्रह जे अपन मित्र मण्डली आ टोली बनाके अपन समाजमे, अपन गाँवमे, अपन वार्डमे अगर एहि तरहके कार्यक्रम चलाबी जे हमरा सप्ताहमे एक दिन, महिनामे या जेना अहाँके अपन हुए, ओहि तरहसँ एकटा समय सुनिश्चित कऽ के हर व्यक्तिके प्रति जागरूक करी, जाहिसँ हमर जे अभियान अछि ओहिसँ हम सफल भऽ सकै छी। स्वच्छता जखने अपनाएब तऽ हमरासँ रोग दूर हैत। धन्यवाद।
1: अमित कुमार दास जी, अपने खूब बढ़िया आ नीक जानकारी दऽ रहल छी। एकटा घटना कहू, आ बच्चामे प्राय सब गोटे संगे एहन भेल है जे गाममे रहैत रही भट्ठा से वा चिमनी से ईटा अगल बगल में खसैत रहे, कोनो व्यक्ति मंगबैत रहे तऽ धियापुता या हमहू सब ओकरा की करैत रही जे ईटा सब के ठार कऽ दैत रहिए, कनेक कनेक दूरी पर ठार, आ एकटा ईटा के खसबैत रही तऽ सबटा ईटा खसि पड़ैत रहे। तऽ ई देख कऽ मन में उत्साह होइत रहे जे ऊर्जा जे छै एक स्थान सँ दोसर स्थान स्थानांतरित होइए, चलैए, जाइए। एहने सन काज ई अछि स्वच्छता। अहाँ लोक सबके अंत में की संदेश देव चाहबै जे एक व्यक्ति जो एकरा अपना लेता तो अपन सबक जे देशक आबादी है, अपन देशक जे जनसंख्या है, सने सने ई जन आंदोलन के रूप लो लेत, जे सब गोटे स्वच्छ रहब तो सब गोटे स्वस्थ रह सके छी। तो मूल शब्द में जो गप करी अहाँ से स्वच्छता के संबंध में, हमारा कनेक शब्द में एक जानकारी दियो जी, एहि सम्बन्धमे अहाँ लोक सबके की संदेश देव चाहबनि, की कहऽ चाहबनि?
0: धन्यवाद अनिल कुमार कर्ण जी, अपने एकटा बहुत सुंदर उदाहरण दिलिए जे बच्चा में हम सब गोटे ईट के खड़ा कऽ के जे छै से एकटा के गिराबै छलहुँ तऽ संगहि सबटा ईटा गिर पड़ै छल, ओहिसँ काफी हमसब ऊर्जावान होइत रहौं, बड़ा खुशी होइत रहै, हृदय गदगद भऽ जाइत रहै। ई एकटा बहुत पैघ उदाहरण अछि। अगर हम एकरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोणसँ देखै छियै, अगर हम स्वस्थ भऽ गेलहुँ, दोसर के कहलियनि, तेसर के कहलियनि, चारिम के कहलियनि, एहि तरहे हमर पूरा समाज स्वस्थ भऽ जेता, गाँव स्वस्थ भऽ जायत, गाँव स्वस्थ हैत, प्रखंड स्वस्थ हैत, जिला स्वस्थ हैत, राज्य स्वस्थ हैत, और हमर देशक हर एक व्यक्ति स्वस्थ भऽ जेता। ओना ही अगर एकर हम अवहेलना करै छी तो हमर रोग के जे कीटाणु अछि ओ एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में, दोसर व्यक्ति से तेसर व्यक्ति में, और एना ही हम सब आदमी संक्रमित भऽ जाएब। जेना पहले होइ छल जे बाढ़ आबै छल, तो बाढ़ आबै छल तो लोग जे छै से जतऽ ततऽ के पानि पीबै छलैथ, और ओहिसँ हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, कई तरह के बीमारी के लोग शिकार भऽ जाइ छलैथ हन। लेकिन आब धीरे धीरे लोक के ई संज्ञान में आबि गेल छनि जे नहि, हम दूषित पानि नहि पीबी, हम बाहरक खाना नहि खाए, जे ढकल खाना छै तकरे खाए, और सही दिशा में अगर लोक के जानकारी भऽ जाए जे वस्तुतः हमरा जे उघार वस्तु छै ओकरा नहि खेबाक चाही, अगर उघार पानि छै ओकरा नहि पीबाक चाही, तो अपन स्वास्थ्य के प्रति सजगता जे छै सबसँ पैघ लोग के आगू बढ़ा सकै छथि और रोग सँ मुक्त कऽ सकै छथि। ताहि दुआरे सबसँ पहले हम सब आदमी से निवेदन करब जे पहले अगर हम सजग हैब तखने दोसर आदमी के सजग करब, हम रोग मुक्त हैब तखने दोसर आदमी मुक्त हैब। ताहि हेतु अगर हर आदमी ई दृढ़ संकल्पित भऽ जाए आइ के दिन में जे हम रोग मुक्त भऽ जाए और स्वच्छता के हरेक नियम के अपनाएब तऽ हर व्यक्ति हमर देश स्वच्छ भऽ सकैत अछि और रोग मुक्त भऽ सकैत अछि।
1: अमित कुमार दास जी, देखियो अहाँ नीक गप कह रहल छियै जे स्वच्छता हमर अहाँक संस्कार, हमर अहाँक संस्कृति में रचल बसल अछि। मुदा पहिने ई होइ छल जे कोनो गाम में किनको एहिठाम कोनो अतिथि अबैत रहे तो दलान पर बैसैत, सबसे पहिने हुनका एक लोटा पानि देल जाइ छल, तौनी देल जाइ छल जे पैर धो आ ओकरा पैर के पोछू। मुदा वर्तमान काल में अहाँ देखब जे आधुनिकता के लेप में, आधुनिकता सँ हमसब बेसी प्रभावित भऽ रहल छी, खास कऽ नवतुरिया धियापुता जे छै ठारे ठार भोजन करता, कतौ खा लेता, सड़क के कात में बिकऽ वाला जे वस्तु होइए ओकरा ग्रहण कऽ लेता, जाहिसँ

0: रोगग्रस्त भऽ जाइ छथि, रोगी भऽ जाइ छथि, अपन शरीर में कष्ट होइ छै, तऽ एहि संबंध में एक सँ दू शब्द में की कहऽ चाहबै अहाँ?
1: सबसँ पहिल बात छै जे हम सजग रही, और अगर सजग रहब तो हम अपन स्वास्थ्य के, अगर स्वास्थ्य हमर धन अछि, अगर हमर, पहले हम कहने रहौं जे मनुष्य के सबसँ पैघ जे धन छै ओ स्वास्थ्य छै, अगर हमरा अपना स्वास्थ्य के प्रति प्रेम अछि तो हम स्वच्छता के नियम के अपनाएब, और ई सबसँ पैघ मूल मंत्र छै रोग मुक्त होय के लेल, जे स्वच्छता के नियम के अपना कऽ हम रोग मुक्त भऽ सकै छी।
0: अमित कुमार दास जी, अपने गाम घर कार्यक्रम में स्वच्छता के संबंध में जे हमर नारा अछि जे स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ, एहि संबंध में श्रोता लोकन के नीक जानकारी दिलियन, ताहि लेल अपने के धन्यवाद।
1: धन्यवाद अनिल कुमार करण जी, एहि कार्यक्रम में हमरा बाजे के अवसर देलौं, ताहि हेतु अहाँके हृदय से धन्यवाद।
2: स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ, एहि विषयक भेंटवार्ता हम सब सुन रहल छलहुँ। भेंटवार्ता कार्य छला अमित कुमार दास, हिनका संग गप कऽ रहल छला अनिल कुमार कर्ण। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भेल ओहिसँ नीक जानकारी भेटल। आब हमसब गीतनादक आनंद ली, सुनी ई गीत।

खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ, गीतक कलाकार अरविंद कुमार झा। एहि संग आब आजुक जे झरोखा कार्यक्रम अछि ओकर समय लग जा रहल अछि। खेती गृहस्थीमे सब किसान भाई लोकनिके, अन्नदाता बंधु लोकनिके स्वागत, संगे सब गोटेके नमस्कार। आइ खेती गृहस्थीमे हमसब एहन विषय पर गप करब जे सभक लेल, सब किसान भाई के लेल, हमरा अहाँक लेल बड्ड बेसी आवश्यक अछि। बड्ड मेहनत, बड्ड लगन से हमसब फसिल के खेत में लगबै छी। ई भरोसा जे उपजा बेसी से बेसी आ नीक से नीक हैत, ओ उपजा भइयो गेल तो ओकर भंडारण आ ओहो से बेसी मूस के उपद्रव से कोना बचब, एहि संदर्भ में गप करब। ओना ई काज तो हमसब पारंपरिक ढंग से प्राचीन काल से करते आबि रहल छी, मुदा वर्तमान समय में वैज्ञानिक ढंग से ई काज करब आवश्यक भऽ गेल अछि। तऽ आउ किसान भाई लोकनि, वैज्ञानिक ढंग से अन्नक भंडारण कोना करी, संगे मूस से एकर सुरक्षा कोना करी वा एकर नियंत्रण कोना करी। अन्न के सुरक्षित भंडारण के लेल ओकरा नीक जकां सुखा लेबाक चाही। ध्यान राखी जे नमीक मात्रा 9-10% से कम रहक चाही। संगे कीट व्याधि से सुरक्षा करब सेहो आवश्यक अछि। अपन सभक गामक लोक सब पुरना विधि से कोठी वा गहूम के बोरा में एकरा भंडारित करै छी। आधुनिक विधि में धातु के नम्हर ड्राम, शाइलो वा गोदाम में अन्न के भंडारण कयल जाइए। अन्न के भंडारण से पहिने ओकरा नीक जकां साफ करब आवश्यक अछि। पारंपरिक अन्न के भंडारण के विधि छोट स्तर पर पहिने गप करी तो माटि के कोठी वा बखारी में एकर संग्रहण हमसब करैत रही। ग्रामीण स्तर पर माटि वा बाँस से बनल कोठी में अन्न बेसी काल धरि भंडारित को अपने राखि सकै छी। एहिमे बेसी समय धरि अन्न सुरक्षित रहैए। जूट के बोरा में अनाज के भंडारण के एहि विधि में बोरा के अन्न के भरि कऽ ऊंच स्थान पर लकड़ी के तख्ता वा बाँस के चटाई पर देवाल से हटा कर राखल जाइत अछि। बोरा सबके कीट से बचाव के लेल कीटनाशक दवाई सभक सेहो व्यवहार करै छी। एकर अतिरिक्त कीड़ा से बचाव के लेल, सुरक्षा के लेल नीमक सुखायल पात, नीम के फल के व्यवहार सेहो करै छी। किसान भाई लोकनि, एकर अतिरिक्त नम्हर स्तर पर अपने सब आधुनिक भंडारण के लेल धातु के बनल नम्हर

0: नमहर ड्राम में अन्न के भंडारण करे छी। साइलो विशाल धातु व कंक्रीट के बनल टैंक हुई है, जाहि में 4,000 से 5,000 टन अन्न के भंडारण अपने कह सके छी। एहिमे अनाज के लोड आ अनलोड करवा के माने राख के आ बाहर कर के जे छै स्वचालित व्यवस्था होइत अछि। वेयरहाउस व गोदाम सरकारी व व्यावसायिक स्तर पर बोरा सबके स्टैक कर राखल जाइए। अन्न के भंडारित करवा कल में किछ खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। नमी के नियंत्रण, अन्न के भंडारित करवा सँ पहिने नीक जकाँ साफ को ओकरा सुखा लेबाक चाही। जाहि गोदाम व घर में अपने अन्न के भंडारण करै छी ओहिमे वायु के संचार नीक जकाँ रहब आवश्यक अछि। आवश्यकताक हिसाब सँ सतर्क भऽ कीटनाशक, नीमक पात व अन्य जैविक पदार्थ सभक व्यवहार करक चाही। मूसक नियंत्रण लेल खेत व गोदाम में रासायनिक दवाई जिंक फॉस्फेट ब्रोमोडिलोन सफाई जाल सभक व्यवहार प्रभावी होइत अछि। एकर अतिरिक्त चूहादानी व ग्लू बोर्ड के व्यवहार सेहो कऽ सकै छी। किसान भाई लोकनि, एकटा कार्यक्रम संबंधी सूचना अछि। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एके गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर होंगे 9430029353, बेसिक नंबर 0627222481। श्रोताओं, समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 यानी कल दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। तो श्रोता लोकनि, हम सब कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनि रहल छलहुँ। आब बेर भऽ चलल अइ सुनी हम सब प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: श्रोतो, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 10 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं, जिनमें अधिकतर युवा हैं। श्रोतो, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव अपनी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदि हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना

0: अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है।
1: अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू?
2: अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है?
1: अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है?
2: कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे।
1: अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या?
2: मतलब?
1: अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाल ही देगी।
2: तेरी शादी कब हुई?
1: बस यार, अभी 2 साल पहले।
2: सही है, बताया भी नहीं।
1: अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला।
2: चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना।
1: चलो ठीक है।
2: अरे दिया, दरवाजा खोलो।
3: हाँ अभी आई।
2: ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने?
3: रमेश भैया है ना।
2: अरे वाह, तुम कैसे पहचानी?
3: एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले की कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ।
2: दिया जरा चाय नाश्ता बना दो।
3: हाँ अभी लाती हूँ।
2: और बता भाई कैसा है तू, और क्या कर रहा है आजकल, और पत्नी बच्चे कैसे हैं?
1: बस यार सब बढ़िया है, अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया।
2: हाँ यार, सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ।
3: ये लीजिए, चाय नाश्ता तैयार है।
2: चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी बनाती है।
1: यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
2: अरे इतनी जल्दी जा रहा है, खाना भी तो खाकर जाता।
1: नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊंगा, बस अभी चलता हूँ।
2: ठीक है भाई।
1: अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था?
2: अरे अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ तू।
1: सच बता दिनेश मुझे, डॉक्टर हूँ, पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ।
2: ठीक है, कल मिल सकता है वहीं पर?
1: हाँ ठीक है, कल मिलते हैं।
2: दिया लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ।
3: अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं।
2: मन नहीं है, तुम खा लो।
3: क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मुझे बताइए।
2: ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी?
3: जी।
1: हाँ रमेश अब बता क्या हुआ।
2: क्या बताऊँ यार, नौकरी सही नहीं चल रही है, एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है, मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ।
1: चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है, और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
2: तो क्या करूँ यार?
1: अरे बस कर यार, उठ और कितना पिएगा, अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ।
2: दिया, ओ दिया दरवाजा खोलो।
3: आज आप फिर से पीकर आए हो?
2: फिर से चपड़ चपड़ करने लगी तू?
3: मैंने क्या किया, मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
2: चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू।
1: दिनेश, ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो भाभी।
3: अरे रमेश भैया आप आइए आइए।
1: नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया।
4: नमस्ते भाभी।
3: नमस्ते।
4: अरे भाभी ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है?
3: अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
1: भाभी दिनेश कहाँ है?
3: वो तो अभी सो रहे हैं।
1: भाभी आप यहाँ बैठिए, ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है

0: आप मुझे बताइए।
1: पता नहीं भैया, इनको क्या हो गया है आजकल। पहले तो ये बहुत सही थे, पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं। मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं, पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है। वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है।
2: अरे अरे भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए।
0: अरे अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ, उठ, तुझसे बात करनी है।
3: अरे भाई, तू सुबह सुबह यहाँ?
0: हाँ, इधर आ बैठ। ये सब क्या चल रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है? शराब पीकर अपना सब कुछ खराब करना चाहता है। तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, फिर भी तू उसकी परवाह नहीं करता। देख भाभी को, और तूने उन पर हाथ भी उठाया।
3: तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती नहीं है ये।
0: दिनेश, शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना। तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ, तो तू मुझे भी मारेगा?
3: भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर, मैं अपना गम भूल जाता हूँ। क्या गलत करता हूँ पीकर? पीकर आता हूँ, आकर सो जाता हूँ चुपचाप।
0: यही तो गलत है यार, जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे। पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का।
3: भाई प्लीज, अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
0: ठीक है यार, फिर हम चलते हैं।
1: अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए।
0: नहीं भाभी, फिर कभी। अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए।
2: दिनेश भैया, शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है, सबसे ज्यादा तो आप खुद। आप समय लीजिए और सोचिए, और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर।
3: जी भाभी जरूर।
0: ठीक है दिनेश, चलते हैं।
3: मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको, अब बस कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो।
4: दिनेश परेशानियों व दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब पीने का आदी हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है, उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे।
3: दिया, ओ दिया।
1: बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पियेंगे, आपकी हालत खराब होती जा रही है।
2: हेलो भाभी।
1: हेलो
2: भाभी, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है ना?
1: रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है, कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी हैं और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं।
2: ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे।
1: प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को।
2: हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए।
1: थैंक यू रिया।
3: दिया, ओ दिया।
1: अरे ये क्या हो गया, खून, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर है, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया।
0: हेलो। हाँ भाभी, भाभी क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों है, सब ठीक तो है ना?
1: नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी, आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं।
0: अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ।
1: भैया दिनेश ठीक तो है ना?
0: हाँ भाभी, अभी तो वो ठीक हो गया है, ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा।
1: थैंक यू सो मच भैया।
0: नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है।
3: दिया, ओ दिया, ये मैं कहाँ हूँ?
0: अस्पताल में।
3: अरे रमेश तू?
0: हाँ मैं। देख दिनेश, डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता।
3: तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार?
0: ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं, दोस्त तो है नहीं तू मेरा, अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया।
2: और तू और शराब की लत में ऐसे फिर

0: गए अपने अपने आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा। क्या हालत हो गई देखो उनकी, और आपने उन पे हाथ भी उठाया। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया।
1: दिया कहाँ है? दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा।
2: नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा हैं।
0: हाँ, और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं। आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो।
2: हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं।
1: अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो दिया।
3: थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की, और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं।
2: अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।
4: श्रोताओ, जैसा कि आपने सुना आज की कहानी में, किस प्रकार तनाव में आकर दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदी हो गया, और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा।
5: तो श्रोताओ, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
6: हमारा फोन नंबर है
7: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
5: आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

एखन हमसब सुनि रहल छलहुँ प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। श्रोता लोकनि, आब बेर भऽ चलल अइ हमसब सुनी मौसम संबंधी सूचना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र सँ 16 मई सँ 20 मई धरि के जे मौसम पूर्वानुमान प्राप्त भेल अइ ओ एहि तरहे अछि। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अनेक जिला सब में गरज के संग मेघ लगवाक संभावना अछि। एकर चलते कतौ कतौ हल्लुक वर्षा भऽ सकैत अछि, तेज हवाक संग वर्षाक संभावना अछि, कतौ कतौ बिजली सेहो खसि सकैए। अधिकतम तापक्रम के गप करी तऽ 32 सँ 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहि सकैए, जखन कि न्यूनतम तापक्रम 24 सँ 26 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता भिनसर मे 75 सँ 70% धरि, बेरुपहर 20 सँ 25% धरि रहबाक संभावना अछि। तऽ ई छल मौसम पूर्वानुमान। चलैत चलैत गीतनादक आनंद ली, सुनी हमसब ई गीत।

खूब सुंदर। एखन जे हमसब गीत सुनल छलहुँ, गीतक कलाकार पूनम कुमारी। एहि संग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रमके समय सम्पन्न हेबाप अइ, तऽ अनिल भाईके चलबाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर और खेती गृहस्थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में दो सीमेंट इकाइयां लगाए जाने के स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की दो बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने अधिकारियों को भूमि परिमार्जन और सर्वे का काम समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सर्वे कार्य में अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो हमारे सेवाएं चल रही है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा किया और उन्होंने राजस्व विभाग के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है सभी कामों का निपटारा हो, और इसके लिए उन्होंने हमें विशेष करके बहुत सारे पदाधिकारी भी इसमें देने का काम किया है कि स्पेशल ड्राइव चलाया जाए और सर्वे के काम में तेजी लाया जाए, जिससे जो जमीन विवाद को लेकर के अपराध के मामले आते हैं उस अपराध पर रोक लगाया जा सके।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने

0: किसानों, उद्यमियों और युवाओं से कृषि अवसंरचना कोष AIF से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। पटना में विभागीय बैठक के दौरान केंद्र की इस योजना की समीक्षा की गई। श्री सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना के तहत नवंबर 2025 तक 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 834 भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। शेखपुरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे मन से कार्य कर रही है।
1: बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने जो लकीर खींचा है उस लकीर को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथों में कमान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस लकीर को ये बड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा है। निश्चित रूप से बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, जो आशा है, उसको वर्तमान सरकार जरूर पूरा करेगी।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें छोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए।
2: यह जो विषय है जिसके कारण तेल का दाम बढ़ रहा है, यह विषय तो पूरी दुनिया से संबंधित है। इसमें भारत का बहुत कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए ऐसे समय में लोगों को चाहिए, विपक्ष के भी जो भी नेता हैं, कि एक जिम्मेवार नागरिक की तरह परिचय दें, अनर्गल बात न करें।
0: प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के किशनगंज, त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे में कार्यरत जंतु विज्ञान विषय की प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह 9वीं गिरफ्तारी है। आरोपी प्राध्यापक ने परीक्षा में संभावित प्रश्नों को विशेष कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को लिखवाया था। इनमें से अधिकांश सवाल 3 मई को आयोजित परीक्षा में पूछे गए थे। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर आज कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और बैंक पासबुक जब्त किए हैं। जब्त सामग्रियों की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने आज जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 2 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान नकद समेत निवेश के कई कागजात बरामद किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है? इधर तो
4: इधर आइए। इधर
5: इधर
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।

0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए ये बात कही है।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज देश और प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़ कर सहयोग की अपील भी की है। इधर जहानाबाद, शेखपुरा और मुंगेर समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में आज जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मी और विभिन्न संस्थाओं के स्वयंसेवी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव में आज जीविका भवन का उद्घाटन किया। ये भवन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में बनाया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना के लिए जुटी रहीं। योजना और विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में कानून और सुशासन का राज है। श्री कुशवाहा रोहतास के शिवसागर में बुद्ध पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत प्रसुंडा बासा बहियार में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गवनडंगा थाना में पदस्थापित दारोगा को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दोनों पर एक महिला की हत्या मामले की जांच के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है। कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शेखपुरा पुलिस ने 7 मई को कसार थाना क्षेत्र के वर्षा गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के

0: अपराध हत्या के मामले में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि फरार अन्य 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा के राजगीर में कल से मलमास मेले का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि कल ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय, जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के ऋषि कुंड में 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला आज से शुरू हो गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। औरंगाबाद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा ने जल कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया है। सांसद अभय कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय की योजना भवन में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनिया टोला से पुलिस ने एक महिला को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: श्रोताओं लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश के प्रस्तुति जिले की हलचल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
3: भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। मई के अंत तक हल्के वाहनों का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। दरअसल पिछले दिनों विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब गंगा नदी में समा जाने से उत्तर बिहार का भागलपुर से सड़क संपर्क बाधित हो गया था। यह सेतु मुख्य रूप से भागलपुर को नवगछिया से जोड़ता है। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद श्री चौधरी ने ध्वस्त पुल का एरियल सर्वे कर जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने का निर्देश दिया। इधर घटना के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने के आरोप में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रोशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं राज्य के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सेतु पर मई के अंत तक हल्के वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए विभागीय निगरानी के साथ साथ आईआईटी इंजीनियरों की देखरेख में प्रमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग कराई जाएगी।
4: लेकिन हम भी अपने कार्यालय में 9 कमिश्नरी को बांटे और उसमें अलग अलग हर कमिश्नरी में एक इंजीनियर रहेगा और उसका पूरा रूपरेखा तैयार करेगा, उसमें कितने सड़क हैं, कितने पुल हैं, कब बना है, कब शुरू हुआ, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसका लाइफ है, इस सारी जानकारी हमारे कार्यालय से होगी।
3: इधर अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चंद्र के नेतृत्व में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज निर्माण कार्य में जुट गई है। उन्होंने बताया कि गिरे हुए स्लैब की जगह 34 मीटर, उत्तर दिशा के कमजोर स्लैब की जगह 12 मीटर तथा दक्षिण दिशा के

कमजोर स्लैब की जगह 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल नाव और जेटी सेवा के माध्यम से लोगों का आवागमन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक हर घर जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ जनगणना और किसान पंजीकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। श्री चौधरी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार स्वर्गीय कृष्ण भूषण कुमार की धर्मपत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी देगी। इससे पूर्व पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी। दरअसल

0: घर जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ जनगणना और किसान पंजीकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। श्री चौधरी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार स्वर्गीय कृष्ण भूषण कुमार की धर्म पत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी देगी। इससे पूर्व पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी। दरअसल बीते दिनों नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में हुए गोलीकांड में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने 12 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी रामधनी यादव को घटना के अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बीते दिनों भागलपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। 6,81,00,000 रुपए की राशि का सेटलमेंट हुआ। भागलपुर सहित राज्य के अन्य चयनित शहरों में मल्टीपल ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना अब धरातल पर उतरने लगी है। 22 अप्रैल को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भागलपुर सहित 11 शहरों के आसपास ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भागलपुर में बनने वाली नई टाउनशिप का नाम विक्रमशिला रखा जाएगा। सरकार की इस पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में जिले से बिहपुर विधायक और भाजपा नेता इंजीनियर शैलेंद्र को, पथ निर्माण मंत्री तथा गोपालपुर विधायक और जदयू नेता शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को ऊर्जा मंत्री बनाए जाने से जिले में खुशी का माहौल है।
1: अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार। आकाशवाणी पटना।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम।

श्रोताओं, हम आपको स्मरण दिला दें, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 9430029353, दूसरा नंबर 06272222481। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे कार्यक्रम हेलो जिंदगी, उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गुप्ता। और अब लीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है मांग भरो सजना। आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले की है, शब्द आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पति परमेश्वर। इस फिल्म में आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। राजिंदर कृष्ण के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेला।

का संगीत था। और अब लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल और जसपिंदर नरूला की आवाजों में। समीर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है, फिल्म का नाम है दाग द फायर।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। और अब लीजिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है सौदागर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विज्ञान कार्यक्रम। निर्माण एवं वाचन स्वर कल्याण कुमार झा का है और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं असद दाऊद।
1: श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम विज्ञान के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस नए अंक के साथ मैं कल्याण कुमार झा। श्रोताओ आज के अंक में हम बातें करेंगे अंतरिक्ष के बारे में, जिसका विषय होगा अंतरिक्ष की दुनिया और हम। साथ ही कार्यक्रम विज्ञान के इस अंक में हम सुनेंगे एक वार्ता जिसका विषय भी अंतरिक्ष से संबंधित होगा, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष। हाँ, यही विषय होगा वार्ता का और वार्ताकार होंगे डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अंतरिक्ष के बारे में, जिसका विषय है अंतरिक्ष की दुनिया और हम। श्रोताओं, अंतरिक्ष की दुनिया और मानव जाति का संबंध अन्वेषण, तकनीक और भविष्य की उत्तरजीविता से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत नासा और इसरो जैसे संस्थान अज्ञात क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन से संबंधित संचार और मौसम तथा सौर मंडल से संबंधित मंगल, चंद्रमा आदि खगोलीय पिंडों की समझ बेहतर हो रही है। यह खोज भविष्य में ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा और खनिजों के लिए असीमित संसाधन प्रदान कर सकती है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा है, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी उज्जवल और उन्नत बना रहा है। इस खोज या अनुसंधान के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो अन्वेषण, मानव और तकनीक, भविष्य के स्रोत आदि इसकी प्रमुख बिंदुएं हैं। हाँ, इस खोज के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले हम बातें करते हैं अन्वेषण के बारे में। श्रोताओं, नासा के आर्टेमिस मिशन और निजी क्षेत्रों के सहयोग से चंद्रमा और मंगल की यात्रा की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मानव और तकनीक के संदर्भ में अंतरिक्ष में मानव जीवन की खोज जैसे ISS और पृथ्वी की नाजुकता को समझना प्रमुख लक्ष्य है। भविष्य के स्रोत के बारे में यह प्रयास असीमित ऊर्जा और क्षुद्र ग्रहों से धातु जैसे संसाधन भविष्य में पृथ्वी पर निर्भरता कम कर सकते हैं। चुनौतियों की बात की जाए तो अंतरिक्ष में

0: मानव जीवन के लिए रेडिएशन, भोजन और सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर हर चीज मशीनों पर निर्भर हो जाती है। अब बातें करते हैं अंतरिक्ष के बारे में विस्तृत रूप से। अंतरिक्ष, जिसे अंग्रेजी में स्पेस कहा जाता है, असीम अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार तीन आयामी विस्तार है, जिसमें वस्तुएं और घटनाएं होती हैं तथा उनकी सापेक्ष स्थिति और दिशा होती है। भौतिक अंतरिक्ष अक्सर तीन रैखिक आयाम की तरह समझा जाता है, हालांकि आधुनिक भौतिकविद आमतौर पर इसे समय के साथ असीम चार आयामी सातत्यक, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, उसका एक भाग समझते हैं। गणित की दृष्टि से अंतरिक्ष को विभिन्न आधारभूत संरचनाओं और आयामों की विभिन्न संख्या के साथ समझा जाता है। हालांकि भौतिक ब्रह्मांड को समझने के लिए अंतरिक्ष की अवधारणा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दार्शनिकों के मध्य इस विषय को लेकर अभी तक असहमति बनी हुई है कि यह स्वयं एक इकाई है या इकाइयों के मध्य एक संबंध है या वैचारिक ढांचे का एक हिस्सा है। पारंपरिक यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के दौरान 17वीं शताब्दी में कई दार्शनिक प्रश्न उजागर हुए थे। इसाक न्यूटन के अनुसार अंतरिक्ष निरपेक्ष था, अर्थात यह स्थायी रूप से अस्तित्व में है और इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अंतरिक्ष में कोई विषय वस्तु थी या नहीं। अन्य प्राकृतिक दार्शनिक, विशेष रूप से गोटफ्राइड लेबनिज ने इसके बजाय सोचा कि अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच संबंधों का एक संग्रह है, जो एक दूसरे से उनकी दूरी और दिशा के द्वारा बनता है। 18वीं शताब्दी में इमानुएल कांट ने अंतरिक्ष और समय को संरचनात्मक ढांचों के तत्वों के रूप में बताया है, जिसको मनुष्य अपने अनुभव के निर्माण हेतु उपयोग करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में गणितज्ञों ने गैर यूक्लिडियन रेखा गणित का परीक्षण करना आरंभ कर दिया था, जिसमें अंतरिक्ष को समतल के बजाय वक्रित कहा गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के आसपास का अंतरिक्ष यूक्लिडियन अंतरिक्ष से विसामान्य होता है। फिर भी सामान्य सापेक्षता के प्रायोगिक परीक्षण ने यह सिद्ध किया है कि गैर यूक्लिडियन अंतरिक्ष प्रकाशिकी और यांत्रिकी के तथा मौजूदा सिद्धांतों की व्याख्या हेतु एक बेहतर मॉडल उपलब्ध कराता है। 17वीं शताब्दी में अंतरिक्ष और समय का तत्वज्ञान ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरा था। गोटफ्राइड लेबनिज, जो जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ थे, तथा इसाक न्यूटन, जो अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, इन्होंने अंतरिक्ष के संदर्भ में दो विरोधी सिद्धांत गठन कर लिए थे। न्यूटन के अनुसार अंतरिक्ष एक ऐसी इकाई के बजाय स्वतंत्र रूप से अन्य विषय वस्तु के ऊपर मौजूद है। इसका खंडन करते हुए लेबनिज ने कहा कि अंतरिक्ष विश्व में वस्तुओं के बीच संबंधों के स्थानिक संग्रह से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतरिक्ष एक ऐसा स्थान है जो कि एक साथ इकट्ठे किए गए स्थानों का परिणाम है। अनधिकृत स्थान वह स्थान है जो कि एक साथ वस्तुओं को रख सकता है और इस तरह के अनेक क्षेत्रों के साथ स्थानिक संबंध हो सकते हैं। लेबनिज के लिए फिर अंतरिक्ष विशेष वस्तुओं या संभव स्थानों के बीच संबंधों का आदर्श अमूर्तीकरण था तथा इसीलिए निरंतर नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष को परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों के समान सोचा जा सकता है, प्रयोग और प्रेक्षण पर अपनी स्थिति के आधार पर। न्यूटन ने अंतरिक्ष को पदार्थीय वस्तुओं के बीच संबंध से कहीं अधिक समझा। श्रोताओं, चर्चा पर अल्पविराम लगाते हुए चलते हैं वार्ता की ओर, जिसका विषय है खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष। वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र।
1: खगोल एवं अंतरिक्ष की दुनिया काफी जटिल एवं व्यापक है तथा विभिन्न प्रकार के रहस्य एवं रोमांच से भरा हुआ है।

इसके कई सारे पहलू सामने आते जा रहे हैं, फिर भी कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। आइए हम पृथ्वी तथा इसके बाहर की दुनिया को समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। खगोल विज्ञान का अभिप्राय दूरस्थ खगोलीय पिंडों यथा तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं, उल्कापिंडों आदि के अवलोकन एवं वैज्ञानिक अध्ययन से है। खगोल विज्ञान का उद्देश्य खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति, विकास तथा उसकी संरचना को समझना है, जिसके लिए दूरबीनों की सहायता ली जाती है तथा डेटा एकत्र किए जाते हैं। खगोल विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं होती हैं, जिनमें प्रत्येक आकाशगंगा में 100 बिलियन से अधिक तारे होते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यंत ही सूक्ष्म, सघन एवं तप्त बिंदु में समाया हुआ था, जो एक महाविस्फोट के बाद तेजी से फैला, जिससे समय एवं आकाश, टाइम एंड स्पेस तथा आकाश गंगाओं अर्थात गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इसे ही बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, जिसके तहत पहले जो सारा पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित था, वो तेजी से फैला तथा यह विस्तार आज भी जारी है। मौलिक कणों से परमाणु बना, जो बाद में तारों एवं आकाशगंगाओं में बदल गए। आकाशगंगाओं के दूर जाने की घटना को सर्वप्रथम एडविन हबल ने देखा। ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में ऐसे तारे हैं जो पृथ्वी के आकार से करोड़ों गुना बड़े हैं। इन्हीं तारों में से सूर्य भी एक छोटा सा तारा है। विभिन्न आकाशगंगाओं में कई सौर मंडल हैं तथा प्रत्येक सौर मंडल के केंद्र में सूर्य जैसे एक एक तारे हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य केंद्र में होता है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर काटते रहते हैं तथा कई ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर काटते हैं। सभी ग्रहों के लिए अलग अलग दिन, रात, साल, तापमान एवं संरचनाएं होती हैं। तारा एक कृष्णपिंड अर्थात ब्लैक बॉडी होता है, जिसके अंदर प्रकाश तथा ऊष्मा का निर्माण करने की क्षमता होती है। सूर्य सहित इन तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें बहुतायत में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तथा भारी परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही ऊर्जा सूर्य से हमें प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा एटम बम के निर्माण में प्रयुक्त नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फीसन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में प्रति न्यूक्लियॉन लगभग 7 गुना अधिक है तथा यही अभिक्रिया हाइड्रोजन बम के निर्माण का आधार है। तारों की गति की माप डॉपलर प्रभाव तथा अभिरक्त विस्थापन यानी रेड शिफ्ट की सहायता से किया जाता है, जबकि तारों के ताप की गणना स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम तथा वीन के विस्थापन नियम से किया जाता है। तारों से निकलने वाले प्रकाश तथा रेडियो तरंगों की सहायता से तारों की प्रकृति तथा उसके अंदर हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूर्य का भीतरी ताप लगभग 200,000 से लेकर 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जबकि बाहरी ताप लगभग 6,000 डिग्री सी है, जिसके अंदर लगभग 94% हाइड्रोजन तथा 6% हीलियम सहित अन्य गैसें हैं। सूर्य का द्रव्यमान 2×10^30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है, जबकि अधिकांश तारे सूर्य से 25 से 50 गुना बड़े हैं। ये तारे सूर्य से बड़ा होने के बावजूद पृथ्वी से ज्यादा दूर होने के कारण छोटे प्रतीत होते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU कहा जाता है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड अर्थात 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जिससे चलकर सूर्य का प्रकाश 8:20 में पृथ्वी पर पहुंचता है। तारे इतनी दूरी पर भी हैं कि उनसे प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तारों एवं ग्रहों के अंतरिक्ष में लटके रहने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल एवं कक्षीय वेग है। अंतरिक्ष में हर पिंड यथा तारे, ग्रह, उपग्रह एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचते हैं, साथ ही

उनके तेज गति के कारण वह केंद्र की ओर जाने के बजाय कक्षा में घूमने के लिए बाध्य होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्र बल संतुलित हो जाते हैं। तारों का जन्म और मृत्यु दोनों होता है। मरते समय यह ड्वार्फ स्टार यानी बौना तारा या पल्सर के रूप में होता है, साथ ही कभी कभी यह ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र के रूप में होता है। हल्के तारे मरते समय लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाते हैं, जिसके चारों ओर हीलियम गैस से बना नेबुला बन जाता है। इस गैस के खत्म होने पर इलेक्ट्रॉन क्षय के कारण व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौना तारा के रूप में बदलकर यह खत्म हो जाता है। मध्यम भार के तारों के विनाश में लाल दानव के चारों ओर भारी तत्व का निर्माण होता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। परिणाम स्वरूप नाभिकीय संलयन प्रक्रिया खत्म हो जाता है तथा न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है। यही न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन क्षय के कारण श्वेत बौना तारा अथवा पल्सर के रूप में खत्म हो जाता है। अधिक भार वाला तारा कृष्ण पिंड अर्थात ब्लैक बॉडी से कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल बन जाता है, जिससे किरणें नहीं निकल पाती हैं। इस प्रकार कृष्ण छिद्र दिखाई नहीं देता है तथा इसका विनाश हो जाता है। सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों ओर प्रमुखतः 8 ग्रह यानी प्लैनेट विभिन्न दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, साथ ही ये अपनी धुरी पर भी घूर्णन करते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ये ग्रह हैं मरकरी यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण तथा नेपच्यून यानी वरुण। प्लूटो को उसके काफी छोटे आकार तथा काफी बड़े परिभ्रमण काल के कारण अब ग्रह नहीं माना जाता है। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह यानी सैटेलाइट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स यानी धूमकेतु या पुच्छल तारा, मेटियोर्स यानी उल्का तथा मेटियोराइट्स यानी उल्का पिंड भी हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर प्रथम चार ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जहां चट्टान, मिट्टी तथा धातुएं हैं। उसी प्रकार अंतिम चार ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। विशाल आकार का होने के कारण इन्हें जाइंट प्लैनेट यानी विशाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति एवं शनि ग्रह पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की बहुलता है, अतः इन्हें गैस प्लैनेट भी कहा जाता है, जबकि यूरेनस तथा नेपच्यून सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण बहुत ठंडा है, इसलिए इन्हें आइस प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी सभी स्थलीय ग्रहों अर्थात आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है, जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है, जिसके कारण यहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में परिक्रमा करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर एक वर्ष 365.25 दिनों का होता है, परंतु व्यवहार में इसे 365 दिनों का माना जाता है तथा अतिरिक्त समय जुड़कर चार वर्ष में एक वर्ष 366 दिनों का होता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर हवा, पानी तथा पर्याप्त ऑक्सीजन एवं अनुकूल ताप होने के कारण यहाँ जीवन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सहित सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ तथा अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जिसके कारण मौसम परिवर्तन तथा दिन रात की घटनाएं होती हैं। सूर्य के द्वारा लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह को उसकी कक्षा में घूमने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है तथा ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रहों का साल अलग अलग होता है। कई ग्रहों के उपग्रह होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध और शुक्र के पास कोई चांद नहीं है, वहीं पृथ्वी को एक चांद तथा मंगल को दो चांद हैं, जबकि बाहरी ग्रहों के पास कई चांद हैं। हमारा चंद्रमा मिट्टी तथा

0: था पत्थर से बना एक पिंड है जिस पर हवा, पानी, मौसम, वायुमंडल कुछ भी नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है तथा उसका अधिकतम तापमान लगभग 110 डिग्री सी होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 384,400 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चारों ओर 27.5 दिनों में एक परिक्रमा पूरा करता है। चंद्रमा पर कभी जीवन संभव रहा होगा, जिससे संबंधित खोज भारत सहित कई देश कर रहे हैं। अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष अभियान। खगोल का संबंध जहां ब्रह्मांड के विशाल भंडार से है, वहीं अंतरिक्ष का संबंध हमारे वातावरण के ऊपरी हिस्से तथा निकट के क्षेत्रों यथा सौरमंडल से है, जहां हम रॉकेट की सहायता से उपग्रहों को भेजकर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य का अंतरिक्ष अभियान मात्र 70-75 वर्ष पुराना है। कृत्रिम उपग्रह को सर्वप्रथम सोवियत रूस तथा अमेरिका ने छोड़ने का काम किया। भारत अपना उपग्रह भेजने वाला रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन तथा जापान के बाद विश्व का छठा देश बना। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में रूस के सहयोग से भेजा गया। विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री सोवियत संघ के यूरी गागारिन थे। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जबकि चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का पहला खगोल यात्री अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। भारत द्वारा आर्यभट्ट के बाद भास्कर 1979 ईस्वी में रूस की ही सहायता से प्रक्षेपित किए गए। भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तहत आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप तथा केरल के त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा प्रक्षेपण स्थल से कई उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। भारत ने कई सारे भू स्थिर उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सफलता हासिल की है, जो संचार तथा मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में काफी सहायक हो रहे हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने दो बार अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की तथा वापसी में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर कई जानकारियां एकत्र की। अभी 2025 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। चंद्रयान 1 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की संभावना का पता लगाया। 2019 में चंद्रयान 2 के असफल लैंडिंग के बावजूद उसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा सफलतापूर्वक कर रहा है। 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने में कामयाबी हासिल की, जिससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। 2013-14 में मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में अपने पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाबी हासिल की तथा ऐसा करने वाला भारत प्रथम एशियाई देश तथा विश्व में चौथा देश बन गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खगोल एवं अंतरिक्ष का क्षेत्र जितना ही व्यापक और रोमांचकारी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। भारत सहित विश्व के बड़े वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिशों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे में हमें इसकी विविधताओं को यथार्थ की कसौटी पर कसकर वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कई अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान सामने आ सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। विषय था खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष तथा वार्ताकार थे डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र। आइए अब कार्यक्रम में जानते हैं अंतरिक्ष में मानव को पहुंचने वाली बातों को। श्रोताओं, सर्वप्रथम यूरी गागरिन 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में कदम रखे तथा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने। भारत की ओर से 1984 ईस्वी में विंग कमांडर राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखे तथा इस तरह वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय मानव बने। श्रोताओं, अंतरिक्ष की खोज करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग प्रतीत होता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने की इच्छा तब तक वास्तविकता में तब्दील नहीं हो सकी जब तक परिवहन के कुछ व्यावहारिक साधन

विकसित नहीं हो गए। 1920 और 1930 के दशक में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट एच गोडार्ड के प्रयोगों ने अंतरिक्ष में वस्तुओं और मनुष्यों को ले जाने का एक व्यावहारिक तरीका दिखाया। तरल ईंधन से चलने वाला रॉकेट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना गोडार्ड की इस नई तकनीक का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड में लक्ष्यों पर बम ले जाने के लिए V2 रॉकेट का निर्माण किया। शीत युद्ध के दौरान अंतर महाद्वीपीय उड़ानों पर परमाणु बम ले जाने के लिए बड़े रॉकेट विकसित किए गए। 1950 के दशक के अंत तक बूस्टर रॉकेट पृथ्वी के कक्षा में वस्तुओं को प्रक्षेपित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गए थे और 1960 तक वे जीवन रक्षक उपकरणों सहित मनुष्यों को ले जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गए थे। पहली बार मनुष्यों के पास अपने ग्रह को छोड़ने का साधन था। अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने वाला वाहन बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक राष्ट्र के संसाधनों की आवश्यकता होती है। सोवियत संघ के विशाल बूस्टर रॉकेट इस क्षमता वाले पहले रॉकेट थे। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक तरीका अंतरिक्ष क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलना था, जिसे अंतरिक्ष दौड़ के नाम से जाना जाने लगा। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ ने 83.5 किलोग्राम अर्थात 184 पाउंड के उपग्रह स्पुतनिक 1 को कक्षा में स्थापित किया। अगले महीने उन्होंने 500 किलोग्राम अर्थात 1100 पाउंड का दूसरा उपग्रह भी लॉन्च किया। इस क्षमता ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद वर्षों में सोवियत संघ ने संचार, मौसम जासूसी और अन्य उद्देश्यों के लिए कई पृथ्वी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में उन्होंने 1960 और 1961 में कम से कम 4 अंतरिक्षयान कुत्तों को यात्रियों के रूप में लेकर भी प्रक्षेपण किए। फिर 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने। वोस्तोक 1 नामक गोलाकार कैप्सूल में उनकी एकल परिक्रमा 1 घंटे और 48 मिनट तक चली। उसी वर्ष 6 अगस्त को गेरमेन टिटोव ने पूरे 1 दिन अंतरिक्ष में रहकर 17 परिक्रमाएं की। सोवियत संघ से काफी पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट मरकरी शुरू किया, जिसमें एक शंकु के आकार के कैप्सूल का उपयोग किया गया था जो एक अंतरिक्ष यात्री को ले जाता था। बंदरों और एक चिंपैंजी को ले जाने वाली कई परीक्षण उड़ानों के बाद एलन शेफर्ड 5 मई 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। उन्होंने अटलांटिक महासागर में 15 मिनट की उपकक्षीय उड़ान भरी। अंततः फरवरी 1962 में एक अमेरिकी जॉन ग्लेन कक्षा में गए और लगभग 5 घंटे में पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं की। जब मई 1963 में प्रोजेक्ट मरकरी समाप्त हुआ, तब तक 4 अमेरिकी कुल 53 घंटे यानी 2 दिनों से थोड़ा अधिक समय के लिए कक्षा में उड़ान भर चुके थे। इस बीच सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल मिलाकर लगभग 8 दिन बिताए थे। चंद्रमा तक पहुंचने की दौड़ की बात करें तो 25 मई 1961 को शेपर्ड की संक्षिप्त उपकक्षीय उड़ान के महज 3 सप्ताह बाद राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने राष्ट्र को इस दशक के अंत तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने और उसे सुरक्षित घर वापस लाने का संकल्प दिलाया। किसी अमेरिकी द्वारा एक परिक्रमा पूरी करने से पहले ही किया गया यह साहसिक संकल्प अंतरिक्ष क्षेत्र में सोवियत संघ को पछाड़ देने के प्रयास में राष्ट्र को प्रेरित करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रारंभिक कार्य को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट जेमिनी की योजना बनाई गई थी। 2 लोगों वाले जेमिनी कैप्सूल की पहली उड़ान मार्च 1965 में जॉन यंग और गस ग्रिसम को लेकर हुई। सोवियत संघ अमेरिकियों से आगे निकल रहा था। अक्टूबर 1964 में 3 लोग, 1 अंतरिक्ष यात्री, 1 डॉक्टर और 1 वैज्ञानिक वोस्कोड यान में 1 दिन की उड़ान पर गए थे। मार्च 1965 में एलेक्सी लियोनोव ने पहली अंतरिक्ष यात्रा की, जबकि पहली मानव युक्त जेमिनी उड़ान प्रक्षेपण पैड पर तैयार की जा रही थी। कई लोगों के लिए

0: विश्व के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अंतिम लक्ष्य पृथ्वी से परे ब्रह्मांड में मानव उपस्थिति का विस्तार करना है। श्रोताओं, वर्तमान में गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जो 2027 की पहली तिमाही में 3-4 अंतरिक्ष यात्रियों को 300 से 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजने का लक्ष्य रखता है। इसरो ने इस 9023 करोड़ रुपए की मिशन के तहत GSLV मार्क 3 रॉकेट का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसमें 4 नामित अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्रमुख हैं। इसी के साथ विज्ञान कार्यक्रम का समय यहीं संपन्न होता है। तो प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ सूत्रधार मुझे यानी कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान कार्यक्रम। निर्माण एवं वाचन स्वर कल्याण कुमार झा का था और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। शाम के 8:45 होने वाले हैं। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

0: दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर

0: बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया।

भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEET paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award at the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of three languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins three bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें कोविड-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुरबत में चला जाएगा। इक्तसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार

वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया गोटा चांद लोदिया थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हलके से नौ मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमूई तौर पर 64 लाख रुपये का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहान के इनका से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिन उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिली होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत

सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

मेरे लिए। फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है।

0: जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाए का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है।

0: लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की मां के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की मां का सशक्त किरदार।
1: रोना के तू है भगत।

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

0: पड़ेगा।
1: पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम चंचा के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो?
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे।

आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

0: सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक
1: तो कितने

सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस करे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं। और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was राग अभोगी। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti.

आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:45 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे पहली सभा के कार्यक्रमों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।